मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शक संवत 1948 के बैसाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई 2026 ईस्वी दिन बुधवार है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रथम सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। जौ प्रश्न कैल जाए। आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का है।
1: प्रश्न कैल जाए जे जीवन में सबसे प्रधान सबसे मूल्यवान वस्तु की थिक, तो क्यों कहता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थिक शक्ति। शक्तिशाली सबके जय कह सकै छे, ओकरा डरे सब क्यों डराई छे, ओकर उचित अनुचित सब कर्म मान्य होइ छे। क्यों कहता सुंदरता श्रेष्ठ अछि, कारण सुंदर व्यक्ति सबके आकृष्ट कऽ लै छे। क्यों कहता बुद्धि श्रेष्ठ अछि, क्यों कहता विद्या श्रेष्ठ अछि। तहिना एहि प्रश्नक भिन्न भिन्न उत्तर प्राप्त हैत, किंतु जँ स्थिर चित्तें विचार कयल जाय तऽ एहि निष्कर्ष पर आयब जे मनुष्यक लेल शील वा आचार प्रधान वस्तु थिक। आचार द्वारा संसारक सब विभूति प्राप्त कयल जा सकै छै। सदाचारक मानव जीवन में बड़ महत्व अछि, वा कहि सकै छी जे जँ मनुष्य शीलवान नहि अछि, आचारवान नहि अछि, तऽ ओकर जीवन व्यर्थ अछि। महाभारत में शील वा सदाचार पर बड़ बल देल गेल अछि। आचार द्वारा बल, आयु, विद्या आ वैभव प्राप्त करब संभव अछि। जना सुंदर अलंकरण सँ शरीरक सौंदर्य बढ़ै छै, जना क्षीर सँ भोजनक उत्तमता में वृद्धि होइ छै, तहिना शील सँ मनुष्यक व्यक्तित्व श्रेष्ठता उत्तमता के प्राप्त करै छै। जना तेज सवारी सँ मार्ग पर विजय करब संभव अछि, तहिना शील द्वारा संसार यात्रा सुगमता सफलतापूर्वक कयल जा सकै छै। जाहि मनुष्यक शील नष्ट भऽ गेल हो, तकरा जीवित रहबाक कोनो अर्थ नहि रहि जाइ छै, ओकर जीवन व्यर्थ अछि। शील विहीन व्यक्ति केहनो विद्वान हो, केहनो बलवान हो, शारीरिक सौंदर्य सँ कतबो संपन्न हो, बंधु बांधव सँ कतबो भरल पूरल हो, किंतु ओकर जीवन व्यर्थ अछि। शील, सदाचार, प्रज्ञा, इंद्रिय निग्रह आदि एकार्थक शब्द अछि। पांच भौतिक शरीरक पांचों ज्ञानेन्द्रिय आ अन्य पांच कर्मेन्द्रिय पर मनक आंकुश राखब इंद्रिय निग्रह कहबै छै। प्रज्ञावान व्यक्ति इंद्रिय पर नियंत्रण राखै छथि। मनक शक्ति के दृढ़तर केने इंद्रिय निग्रह कयल जा सकै छै। मनुष्यक इंद्रिय ओकर शत्रुओ होइ छै आ मित्रो। इंद्रिय मित्रवत कार्य करत वा शत्रुवत, ई निर्भर करै छै मन पर। जाहि व्यक्तिक मन अपना अधीन में छनि, ओ इंद्रिय सँ सम्यक कार्य लै छथि। जाहि व्यक्तिक मन निर्बल छनि, इंद्रिय पर नियंत्रण रखबा में अक्षम छनि, हुनक इंद्रिय निश्चित रूपे कुकर्म दिस प्रवृत्त होइ छनि। जना कुशल घोड़सवार केहनो बिगड़ल घोड़ा के वश में कऽ लै छै, तहिना जाहि व्यक्तिक मन शक्तिमान छनि, ओ इंद्रिय के नियंत्रण में राखै छथि। तैं सब युग में तत्वदर्शी ऋषि मनीषी लोकन मौनक शक्ति के बढ़ेबा पर बल देलन अछि। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रज्ञावान बनबाक उपदेश दै छथि। प्रज्ञा द्वारा मौनक शक्ति संवर्धन होइ छै। भगवान बुद्ध आ वर्धमान महावीर सेहो प्रज्ञा, शील आ समाधि के मनुष्य जीवनक आधार कहलने अछि। भगवान महावीर के जिन कहल जाय छै, जिन शब्दक अर्थ होइ छै विजेता। की भगवान महावीर कोनो देश जीतने छला? नहि, ओ कोनो समर भूमि में नहीं गला, कोनो देश जाय नहीं कलन, तखन विजेता किया कहलन? तो भगवान महावीर अपन आत्मिक शक्ति के बढ़ौलन, तप द्वारा मनक शक्तिक संवर्धना कलन, मनोगत सबटा दुर्भाव पर विजय प्राप्त कलन, तैं कहलन जिन वा विजेता।
0: चिंतन आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।

0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाचन स्वर गोपी चंद झा का है।
1: प्रभात, आज कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 के शुरू कैल गेल एकटा प्रमुख राष्ट्रीय योजना है। एकर मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी और प्रति बूंद बेसी फसल सुनिश्चित केनाय। योजना किसान के पटौनी लागत कम कर हुनक आय बढ़ावे में सहायता करते। एकर प्रमुख उद्देश्य और लाभ है सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर छिड़काव जेहन आधुनिक तकनीक के बढ़ावा देना ताकि जल के भारी बचत भ सके। जल संरक्षण, वर्षा के जलक संचयन और भूजल स्तर के सुधारना, फसल उत्पादन में वृद्धि, आधुनिक पटौनी से फसल के गुणवत्ता और उपजा में 40-50% धरि वृद्धि होइत अछि। एहि योजना के अंतर्गत किसान भाई के आधुनिक उपकरण लगाबे पर भारी सब्सिडी प्रदान कयल जायत। संगे संग इहो गप के ध्यान में राखल जायत अछि कि ड्रेनेज ड्रिप सिस्टम से सब वर्ग के किसान के 90% धरि सब्सिडी में भेटत अछि। स्प्रिंकलर सिस्टम, एहि में किसान लोकन के 75% धरि अनुदानक प्रावधान है। योजना के लाभ लेबाक लेल किछ आवश्यक दस्तावेज आवश्यक होते है। किसान पंजीकरण संख्या, भूमि के अद्यतन कागजात, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और जाति प्रमाण पत्र। आवेदन यही प्रकार करी, ऑनलाइन आवेदन अहाँ अपन राज्य कृषि विभाग का या उद्यानिकी विभाग का आधिकारिक वेबसाइट जना बिहारक लेल उद्यान निदेशालय बिहार या सेवा ऑनलाइन बिहार पर जाकर पंजीकरण कर सके। ऑफलाइन आवेदन अपन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, किसान सलाहकार या कृषि उद्यान विभाग के कार्यालय से संपर्क करी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि उत्पादकता में सुधार आनना और देश में राष्ट्रीय संसाधन के बेहतर उपयोग के सुनिश्चित करबाक लेल एकटा राष्ट्रीय मिशन योजना है। एहि योजना का व्यापक दृष्टिकोण देशक सबटा कृषि क्षेत्र में जल पहुँचेनाय है। संगे संग एहि योजना के जे मुख्य उद्देश्य है कि प्रति बूंद बेसी फसल, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक के बढ़ावा देकर पानी के जल के बर्बादी को रोकने, जल संरक्षण, वर्षा के पानी के संचयन और भूजल स्तर के सुधारने और आधुनिक पटौनी पर सब्सिडी अनुदान देने, खेत में जलक उपयोग के कुशल बनाबे के लिए किसान के आधुनिक उपकरण लगाबे हेतु भारी सब्सिडी प्रदान कयल जायत अछि। ड्रिप सिंचाई सब श्रेणी के किसान के लगभग 75-90% तक सहायता देल जायत अछि। स्प्रिंकलर सिंचाई सामान्य किसान के लगभग 45-55% और छोट जो सीमांत किसान होइया ओकरा 70-80% तक सब्सिडी भेटत अछि। बिहार में कृषि विभाग द्वारा राज्य सरकार के टॉपअप के मिलाकर किसान के विशेष लाभ देल जा रहल अछि। ड्रिप सिस्टम में सब श्रेणी के किसान के 90% तक अनुदान भेटत अछि। स्प्रिंकलर सिस्टम में सब श्रेणी के किसान के 75% धरि के अनुदान भेटत अछि। अब आवेदन कोना करी, तो पोर्टल अहाँ बिहार के उद्यानिकी विभाग का जो हॉर्टिकल्चर विभाग अछि पर PMKSY पर ऑनलाइन आवेदन कर सकै छी। आवश्यक दस्तावेज में किसान पंजीकरण संख्या, भूमि के दस्तावेज, LPC रसीद, आधार कार्ड और बैंक पासबुक, आन जे माध्यम या ऑनलाइन में असुविधा भेला पर अहाँ पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, किसान सलाहकार या प्रखंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकै छी। तो बेसी जानकारी लेल दिशा निर्देश आ आन राज्य में लागू नियम के देखबाक लेल अहाँ भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का आधिकारिक जे वेबसाइट है ओहू पर अहाँ जा सके छी और एकर जानकारी लो सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि उत्पादकता में सुधार लाबे लेल और देश में संसाधन के बेहतर उपयोग के सुनिश्चित करबाक लेल एकटा राष्ट्रीय मिशन है। आ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का अर्थ की है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का व्यापक दृष्टिकोण देश का सबटा जे कृषि खेत है ओकरा सुरक्षात्मक सिंचाई के कोनो न कोनो साधन तक पहुँच सुनिश्चित केनाय है ताकि प्रति बूंद बेसी फसल के उत्पादन भ सके और एहि प्रकारे वांछित ग्रामीण जे समृद्धि है वो प्राप्त भ सके। एहि के संगे आज कृषि चर्चा का समय संपन्न होइत अछि। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिया।
0: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे, अब आप समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये दो दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलोबॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। आंखों में चोट लगने पर क्या करें, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह।

0: स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे आंख में चोट लगना इस विषय पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह। डॉक्टर साहब, आंख में चोट लगना या फिर धूल या कुछ ऐसी वस्तु का प्रवेश कर जाना जिससे आंख में न सिर्फ तकलीफ होती है, कई बार आंख की रोशनी तक चली जाती है
1: जी।
0: सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है धूल
1: जी।
0: उसमें क्या करें लोग?
1: अगर किसी आंख में अचानक धूल चला गया, आंधी में है या बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के आंख में धूल झोंक दिया
0: जी,
1: तो उसमें पहला उपचार के तौर पर चिकित्सक तो बाद में देखेंगे उसको, कम से कम साफ पानी से उसको जितना आप धो सकते हैं उतना धोइए, आंख रगड़िए मत। क्योंकि जब भी आप आंख को रगड़ेंगे तो धूल कण के से आप आंख को रगड़िएगा तो कॉर्निया डैमेज करेगा, वो
0: छिल जाएगा।
1: हाँ, छिल जाएगा और अल्सर बना देगा। तो आप इसी स्थिति में वैसे ही छोड़ दीजिए, जहाँ पर आइए अगर साफ सुथरा पानी मिलता है उससे धो लीजिए, उसके बाद भी आपको कष्ट रहता है तो कोई प्लेन एंटीबायोटिक ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन का ड्रॉप डालिए
0: और फिर डॉक्टर
1: जी फिर डॉक्टर से मिलिए।
0: कुछ लोग लोहे का काम करते हैं,
1: व्यवसाय है जिनका, बिल्डर है या
0: बिल्डर का काम करते हैं, तो कई बार चिंगारी
1: स्मिथ वाले हैं, लोहार का काम है,
0: चिंगारी या लोहे का बुरादा या कोई कण आंख में अचानक चला जाता है।
1: आंख में अचानक चला जाता है तो उसके लिए आपको उसमें आंख में, अब देखिए अगर बहुत छोटा कण है हो सकता है आंसू के थ्रू भी निकल जाएगा, निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंख में कोई कष्ट नहीं है, मतलब कि पानी नहीं आ रहा है, आंख में दर्द नहीं है, आंख को में फोटोफोबिया जिसमें कि सूरज की रोशनी में या जनरल रोशनी में आपका आंख बढ़िया से खुलता है, इसका मतलब है कण उसके अंदर नहीं होगा। जब वो कण कॉर्निया पर लॉज कर जाएगा तो आंख से पानी आएगा, आपको आंख में दर्द रहेगा, आंख को आपको धूप में नहीं खोलने देगा। तो वैसी हालत में आपको उसको कण को निकलवाने के लिए विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए, और ज़्यादा लेट कीजिएगा तो उसके साथ साथ वो इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है, तो उसमें डिले नहीं करना है, जितनी जल्दी हो वो आप विशेषज्ञ के सलाह से उसको अगर अंदर पड़ा हुआ तो उसको निकलवाइए और जैसा सलाह दे वो उसी उसी
0: कई बार कुछ ऐसा लिक्विड है जिसका लोग काम करते हैं, केमिकल कह लीजिए या फिर कभी चूना या कोई ज्वलनशील पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: अगर वो आँख में चला जाए तो
1: वो एक उसमें दो चीज़ है, या तो अचानक आपके आँख के अंदर जैसे आदमी गाड़ी को जो ड्राइवर है वो उठाया उसमें एसिड रहता है वो आँख में चला गया, या फिर पेंटर है जो पेंट कर रहा है दीवार को उसके आँख में चूना चला गया, दोनों आँख के लिए घातक है। और एसिड से ज्यादा घातक चूना है, चूना को लोग कम घातक समझता है बट अल्कली ज्यादा डैमेज करता है। कारण है कि वो जब अंदर जो आँख के अंदर जाता है तो वो उसमें उसको घुला देता है, वो उसको घुलाता है और सोपनिफिकेशन कहलाता है वो। तो उसको पहला उपचार क्या है कि आप उसमें भी है कि प्लेंटी ऑफ वाटर से आँख को धोइए,
0: साफ पानी,
1: एकदम साफ पानी से, जितना 5 लीटर 10 लीटर जितना भी धो सकते हैं, ताकि उसका कहीं पर भी कानून होगा।
0: और डॉक्टर साहब, धोने की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए?
1: बहुत तेज में आंख में छींटा नहीं मारिए, नॉर्मल वे में, नॉर्मल वे में एक तरह से, अगर आप ये है अगर अच्छे से धोना चाहते हैं तो सलाइन में जो आता है आर एल वाटर उसको IV सेट से आंख के पास लगा देना चाहिए।
0: अच्छा,
1: उसको ऑन कर दीजिए फुल स्पीड में, तो जितना आँख के अंदर जाएगा जितनी गंदगी होगा, तो एस्ट्रायल भी है वो, साथ साथ वो पानी भी है,
0: लेकिन पूरी सावधानी।
1: अगर हाँ जी जी, अगर वो उतना उपलब्ध नहीं है तो कम से कम नल का पानी जो है साफ सुथरा, ट्यूबवेल का पानी, उससे आँख को धोइए।
0: और बच्चे कभी कभी तीर धनुष चलाते हैं, गेंद या फिर कुछ ऐसे खिलौने, उसकी वजह से भी कभी कभी आँख में।
1: हाँ जी जी, बच्चे को उससे चीज से, नोकीली चीज से उसको मना करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि वो नोकीला चीज हाथ में
0: पेंसिल
1: ले तो उसका वो उसका उससे भी डैमेज होने का चांस रहता है। तो उससे लिखने के लिए ठीक है, खेलने का उसको डिस्करेज कीजिए बच्चे को, नहीं तो फिर आंख में लगने के बाद हो सकता है
0: दुर्घटना कहकर नहीं आती।
1: हाँ जी जी जी, उसमें
0: अगर दुर्घटना
1: हो गई तो फिर उसका प्रॉपर उपचार होना चाहिए।
0: कभी लोग यात्रा भी कर रहे होते हैं गाड़ी पर और दुर्घटना हो जाती है
1: जी,
0: और आँख से खून तक निकला।
1: हाँ, आँख में खून निकला, विजन ठीक है तो चिंता नहीं ली। देखिए कभी कभार कि आदमी बहुत घबराया हुआ है कि मेरा आँख एकदम लाल हो गया है, मगर पूछिएगा उससे कि आँख तो लाल है, दिखता है ना सब चीज, तो बोलेगा कि नहीं दिखता ठप है, तो उसमें घबराना नहीं है, दैट इज ए सब कंजक्टिवल हेमरेज। अगर देखिएगा कि आँख उसका लाल नहीं है मगर उसका रोशनी गड़बड़ा गया, इसका मतलब भीतर में उसको गड़बड़ है, या तो विट्रस हेमरेज हो गया या मैकुला को डैमेज किया या रेटिनल को डिटैच किया, वो ज्यादा घातक है बनिस्बत उसके कि जिस सीधे आंख लाल है उसको दिखता हो
0: जी। आंख में
1: जी
0: चोट लगे किसी भी प्रकार से, धूल जाए, लोहे का बुरादा जाए,
1: बेटर
0: या ज्वलनशील पदार्थ

0: जाए, तीर धनु से लगे या फिर दुर्घटना में आंख चोटिल हो जाए, अपने विशेषज्ञ से नेत्र रोग विशेषज्ञ से तुरंत।
1: एक चीज हम कहेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कोशिश कीजिए कि ये आपको डैमेज नहीं करे, धूल आपके अंदर आंख में नहीं जाए। जो लोग उस व्यवसाय में वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लास लगाकर काम करे, और बच्चा को आप नकली चीज से बंद ये कराइए, उसको डिस्करेज कीजिए। अगर हो जाता है तो उसको प्रॉपर अर्ली स्टेज में उसको दिखलाइए, जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए।
0: डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह साहब, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा, अभी आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

मनुष्य आकाश की तरह है और उसकी सुख सुविधाएं ऋतुओं की तरह वे आते और जाते रहते हैं।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं आध्यात्म और भक्ति के मार्ग की संगीतमय यात्रा वंदना। संसार का कोई भी व्यक्ति हमें लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता, कोई केवल मार्ग बता सकता है। चलना हमें स्वयं है। जहां मन पूरी तरह समर्पण कर दे वहीं द्वार खुल जाते हैं।

आप सुन रहे हैं आध्यात्म और भक्ति के मार्ग की संगीतमय यात्रा वंदना। प्रहलाद जैसा विश्वास, भेलनी जैसी आस, मीरा जैसा इंतजार और द्रौपदी जैसी पुकार है तो भगवान को स्वयं आना ही पड़ता है।

आप सुन रहे हैं आध्यात्म और भक्ति के मार्ग की संगीतमय यात्रा वंदना। भगवान कहते हैं मन, वचन, काया और आत्मा का उपयोग औरों के लिए कीजिए, फिर आप पर कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं।

इसी भजन के संग संपन्न होती है आध्यात्म और भक्ति के मार्ग की संगीतमय यात्रा वंदना। वंदना के अंतर्गत अभी आप भक्ति संगीत का आनंद ले रहे थे। आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, प्रमुख स्वर अनुराधा पौडवाल का है।

अपने मन में उपजे मोह की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी भगवान राम के बाल रूप की अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है ये मनोहारी रूप, लाल लाल हथेलियां मानो कमल की रक्ताभ पंखुड़ियां हों, भुजाओं पर रत्नजटित आभूषण, सिंह शावक की भांति कंधे, शंख के समान तीन रेखाओं वाली ग्रीवा, लाल अधरों के पीछे ऊपर नीचे दो दो दंतलियां, सुंदर गाल और चंद्र किरणों की भांति

अपने मन में उपजे मोह की कथा सुनाते हुए काकभुशुंडी भगवान राम के बाल रूप की अद्भुत छवि का वर्णन कर रहे हैं। कैसा है ये मनोहारी रूप, लाल लाल हथेलियां मानो कमल की रक्ताभ पंखुड़ियां हों, भुजाओं पर रत्नजटित आभूषण, सिंह शावक की भांति कंधे, शंख के समान तीन रेखाओं वाली ग्रीवा, लाल अधरों के पीछे ऊपर नीचे दो दो दंतलियां, सुंदर गाल और चंद्र किरणों की भांति शीतलता प्रदान करने वाली मधुर मुस्कान। शिशु रूपधारी श्रीराम आंगन में अपनी परछाई देखकर नर्तन करते हैं, कभी कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसके फुदक कर भाग जाने पर ललचाने के लिए उसे पुआ पकवान दिखाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की ये लीला देख काकभुशुंडी के मन में सहज ही कौतूहल होता है कि प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हैं, और मन में ये शंका आते ही उन पर प्रभु प्रेरित माया आच्छादित हो जाती है।

रामचरितमानस गान का भी आपने आनंद लिया। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला। समय होगा प्रातः के 7:05 पर। प्रातः 8 बजे सुनिएगा समाचार प्रभात।

8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और प्रातः के 8:30 पर सुनवाएंगे खबरनामा। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रातः के 8:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। अंजुमन उर्दू कार्यक्रम का समय होगा प्रातः के 9:10 पर। प्रातः 10:00 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। लोकगीतों का प्रसारण करेंगे प्रातः 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा मोहन वीणा वादन। कलाकार होंगे विश्व मोहन भट्ट। समय होगा प्रातः 11:00। 11:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दोपहर के 12:00 सुनवाएंगे नए फिल्मों के गाने फिल्म संगीत के अंतर्गत। महिला श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम सुनिएगा नारी संसार 12:30 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 1:00। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा देशभक्ति गीत। कलाकार होंगे मोहम्मद रफी। दोपहर के 1:15 पर आप आनंद ले पाएंगे फिल्म संगीत का। दोपहर 2:00 हमारे पटना केंद्र से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। दोपहर के 2:05 पर सुनिएगा इलाकाई खबरें। रोजगार सूचना का समय होगा दोपहर 2:10 पर। दोपहर के 2:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा दोपहर समाचार। फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे आप दोपहर के 2:30 पर। सुगम संगीत सुनवाएंगे दोपहर के 3:00। दूसरी सभा के आरंभ में सुनिएगा युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। चर्चा का विषय होगा स्टार्टअप और रोजगार। समय होगा संध्या 5:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या के 5:40 पर। विद्यापति की किताब सुन पाएंगे संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का समय होगा संध्या 6:25 पर। संध्या 6:30 पर सुनिएगा गांव घर के अंतर्गत कार्यक्रम घर अंगना। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। खेती गृहस्थी का समय होगा संध्या 7:00। संध्या 7:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से, साथ ही जिले की हलचल। संध्या 7:52 पर आनंद ले पाएंगे आप फिल्म संगीत का। सिंगरहार यह कार्यक्रम सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। समाचार संध्या आप सुन पाएंगे रात्रि 8:45 पर। 9:00 News@9। उर्दू खबर आप सुन पाएंगे रात्रि के 9:15 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा चर्चा का विषय है। समय होगा रात्रि के 9:30 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा लोक माधुरी गीतों के रंग। यह कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से, जहां आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं

0: संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नार्वे, स्वीडन्, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370+870,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा समाप्त कर इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक

0: बच्चों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: रोम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में समझौता होने की संभावना है। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के AI संचालित होलोबॉक्स स्थापित किए जा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार को भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा और जयपुर भी जाएंगे। श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ी डोपिंग जांच में विफल रहे थे। अंकित ने 69वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान और पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। आरोपों को स्वीकार करने के बाद दोनों खिलाड़ियों के प्रतिबंध की अवधि में 1 साल की कमी कर दी गई है। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए थे। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश भीषण लू की चपेट में है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। बांदा में तापमान लगातार 3रे दिन 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार प्यार भरा नमस्कार आशीष आपको भी नमस्कार।
1: नमस्कार मनोज, कार्यक्रम के शुरुआत हम सब सब दिन सुविचार से करे छी।
0: जरूर, नेक इंसान बनने के लिए वैसा ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए आप करते रहते हो, ये विचार हैं गौतम बुद्ध के।
1: निश्चित तौर पर जब तक आप आंतरिक तौर पर नीक नहीं रहो, आंतरिक तौर पर अहाँ के स्वभाव नहीं निक रहत, तो अहाँ के ऊपरी जे अछि पहनावा या ऊपरी जे अहाँ के सुंदर बने के अहाँ के प्रयास अछि से कनिये देर रहित अछि, और तकर बाद फिर अहाँ के जे आंतरिक गुण अछि सह सब ठाम सबके मोन रहै छन। ताहि दुआरे अपने आप के नीक बनबे के दिशा में अगर अहाँ आगू बढ़े ला चाहे छी तो अपन गुण के सेहो बढ़ाओ, क्योंकि अहाँ के गुण सह समाज में रहित अछि और वह गुण के लोग सब चर्चा सेहो करै छथि और अहाँ से जुड़ते जाय छथि, और जे गुणी आदमी होइ छथि से इतिहास में सेहो नाम करै छन, और कार्यक्रम में सेहो आइ के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण अछि ताहि पर हम सब चर्चा कऽ ली।
0: आज है 20 मई और 20 मई के इतिहास में डालते हैं कि क्या क्या है, इस पर एक नज़र। 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश के बीना में हजारों करोड़ की लागत से बनी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की। यह भारत पेट्रोलियम लिमिटेड ओमन ऑयल कंपनी तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से बनी विश्व स्तरीय परियोजनाएं हैं। 2011 में झारखंड के पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिलाएं होने का गौरव हासिल करते हुए पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था। 2006 में चीन ने कहा ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता के पात्र नहीं है, और 20 मई को जन्मे महान व्यक्ति इस प्रकार हैं। 1977 में अंजुम चोपड़ा भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान रही, उनका जन्म हुआ था। 1918 में पीरू सिंह भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक थे, का जन्म हुआ था। और 1900 में सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध हिंदी के कवि थे, उनका जन्म हुआ था।
1: एखन श्रोता सब सुनित रही और जानकारी प्राप्त करते रही आई के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है। आप हम सब अपने सब लग रेडियो सेट के माध्यम से और आप तो न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से सेहो, यानी कि दोनों के माध्यम से आन रहल छे ई मैथिली गीत।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे मैथिली सुगम संगीत, उम्मीद करते हैं श्रोताओं को पसंद आया होगा। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हाँ, अपने आस पड़ोस की गतिविधियां संस्कृति पर डालते हैं नज़र, यानी कि हाल चाल लेकर के उपस्थित हैं आशीष जी।
1: सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संघ हम आशीष सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज के गर्डर चढ़बे के लेल आइ 20 मई के 3 घंटा 50 मिनट धरि ब्लॉक रहत। ऐसे बहुत रास ट्रेन के रफ्तार

से थम जायत और यात्री सबके कनी परेशानी के सामना करे पड़ सके छन। सिमरी बख्तियारपुर बुनियाद केंद्र में विशेष आँख जांच अभियान में 1280 लोग सबके जांच कैल गेलन। एहिमे 1050 व्यक्ति के चश्मा भेटलन। 7 निश्चय 3 उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय रहित प्रखंड सब में डिग्री महाविद्यालय के संचालन कैल जायत। एहि के लेल जिला के सहरसा जिला के 6 प्रखंड में डिग्री कॉलेज संचालन के लेल चयन कैल गेल अछि, जाहिमे आब सलखुआ प्रखंड में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोपरिया के डिग्री कॉलेज के लेल चयन भेल अछि। खजौली बाजार के मंगती चौक सँ अम्बेडकर चौक धरि सड़क किनार कैल गेल अतिक्रमण के हटबै के लेल प्रशासन 22 मई के तिथि निर्धारित कयने छथि। दंडाधिकारी और भारी पुलिस बल के मौजूदगी में ई अभियान चलाओल जायत। सीतामढ़ी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विभिन्न पद के लेल काउंसलिंग आई से शुरू भ रहल अछि। ई प्रक्रिया 1 जून धरि चलत। अभ्यर्थी सबके शैक्षणिक प्रमाण पत्र आ आन आवश्यक दस्तावेज के संगे उपस्थित भेनाय अनिवार्य छन्। राज्य सरकार नगर निकाय सब में लंबित सशक्त स्थायी समिति के गठन के प्रक्रिया के फेर से शुरू करे के निर्णय लेने छथि। नगर विकास आ आवास विभाग 26 से 31 मई धरि निर्वाचन कार्य के पूरा करबे के निर्देश दलैत। पुपरी के सुरसंड ग्रिड सँ पुपरी पावर सब स्टेशन के बीच 33 केवी नवका लाइन के निर्माणक कारण चोरौत 11 केवी फीडर में आई 9 बजे से 1 बजे धरि बिजली आपूर्ति बाधित रहत। नगर परिषद शाहपुर पटोरी में होल्डिंग टैक्स में जुर्माना खत्म कऽ देल गेल अछि। आब निवासी सब खाली ब्याज के भुगतान कऽ के अपन होल्डिंग टैक्स जमा कऽ सकै छथि। बेगूसराय जिला में कार्यरत विशिष्ट शिक्षक सबके वेतन संरक्षण लाभ के बाद वेतन निर्धारण के लेल शिक्षा विभाग प्रक्रिया तेज कऽ देलक अछि। एहि संबंध में डीपीओ स्थापना सबटा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सबके आवश्यक निर्देश जारी कयलथि। नावकोठी प्रखंड के विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्र पर अन्नप्राशन कार्यक्रम के आयोजन भी कयल गेल। कार्यक्रम में केन्द्र सबके पोषक क्षेत्र के अभिभावक महिला सब आ धातृ माता सब के संगे 6 मास से ऊपर और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चा सब शामिल भेलत। कार्यक्रम के उद्देश्य बच्चा सबके कुपोषण के रोकथाम आ हुनक सर्वांगीण विकासक लेल 6 माह के बाद ऊपरी आहार दै के आदत विकसित केनाय छल। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भगवान पुर प्रखंड में आयोजित मंडे मेगा क्विज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे वाला छात्र छात्रा सबके स्कूल में पुरस्कृत कयल गेलन। मिडिल स्कूल महदोली में विद्यालय स्तर पर प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करे वाला बच्चा सबके शिक्षक सब पुरस्कार द के सम्मानित कलखिन। पुरस्कार पाबि के बच्चा सबके चेहरा खिलल छलन। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश पर सब सोम दिन कक्षा 3 से 12 धरि के बच्चा सबके लेल क्विज के आयोजन कयल जा रहल अछि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग में विमर्श प्रसंग आ प्राप्ति विषय पर व्याख्यान का आयोजन भेल। घनश्यामपुर पंचायत सरकार भवन गनोन परिसर स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र गनोन में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कयल गेल। शिविर में 72 मरीज के इलाज कऽ के उनका आवश्यक दवाई आ ओआरएस देल गेलन। 17 लाभार्थी सबके आयुष्मान कार्ड सेहो बनायल गेलन। शिविर में मरीज सबके विभिन्न बीमारी से बचाव आ आन जानकारी सेहो देल गेलन। सिमरी बख्तियारपुर में जनगणना 2027 के पहिल चरण के निरीक्षण कयल गेल। अधिकारी सब परिवार सब से जानकारी प्राप्त कऽ के प्रगणक सबके सूची से मिलान कयलथि। कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से भ रहल वृद्धि के देखैत बांध के भीतर रहे वाला लोक सब तैयारी शुरू कऽ देने छथि। नाव सब के मरम्मत सेहो शुरू अछि। आई देश भर के दवाई दुकान सब बंद रहत। ऑनलाइन दवाई के बिक्री के विरोध में ई बंद राखल गेल अछि। सुपौल जिला में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के प्रभावी बनबे के लेल कार्यक्रम के शुरुआत कयल गेल। सिविल सर्जन एहि कार्यक्रम के उद्घाटन कयलथि। एहि में 6 से 7 साल धरि के बच्चा सबके फाइलेरिया संक्रमण के स्थिति के आकलन कयल जायत। जगह जगह जन समस्या सबके निपटारा के लेल सहयोग शिविर के आयोजन भेल।

0: मधुबनी जिला में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लोक सब के स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ दै के लेल नवका पहल शुरू कयल गेल अछि। राशन वितरण केन्द्र सब पर राशन वितरण के संगे आयुष्मान कार्ड बनाओल जायत। भीड़ में नुकायल चेहरा सबके और बनावट और हरकत के अब मशीन से नजर रखल जायत। रेलवे अहाँ के समस्तीपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशन सब पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा के सुरक्षा व्यवस्था के और हाईटेक बना देने छथि। एखन समस्तीपुर मंडल के हसनपुर रोड जंक्शन सकरी चकिया मधुबनी और बेतिया स्टेशन पर ई व्यवस्था सक्रिय कऽ देल गेल अछि और एहि से सुरक्षा एजेंसी सबके बहुत मदद भेट रहल छनि। एहि संग सम्पन्न होइत अछि आजुक हालचाल।
1: मौसम कैसी है बहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
0: छोट सनक व्यावसायिक विश्रामक बाद एक बेर फिर से स्वागत है अहाँ सबके अपन कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में। आजू कार्यक्रम लग उपस्थित छी हम आशीष
3: और मैं हूँ मनोज। इसके साथ डालते हैं कुछ लोकल अपडेट पे नजर। बिजली पानी नगर निगम में सफाई पियोजल स्ट्रीट लाइट या मृत पशु आदि से संबंधित शिकायतों को लेकर के निगम के नियंत्रण कक्ष में फोन कर सकते हैं, जिसका नंबर है 62 027 77 74 0 पे शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर है 77 63 81 87 77। दूसरी नंबर है 92 64 45 64 13 पर संपर्क कर सकते हैं। रेल की अगर बातें करें तो 8:26 होंगे नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति। दोपहर 12 बजे होगी 12:33 होंगे पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस और शाम 7 बजे होगी नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमान की अगर बातें करें तो 9:30 है मुंबई के लिए, 11:30 पे दिल्ली के लिए, 12:25 होंगे कोलकाता के लिए, 12:50 पे दिल्ली के लिए, 1:35 पे मुंबई के लिए, 3 बजे हैदराबाद के लिए और 4:35 होंगे फिर दिल्ली के लिए।
0: अब अगर हम सब गप कर ली मौसम के तो उत्तर बिहार के अनेक जिला में गरज वाला मेघ बने के संभावना व्यक्त कैल गेल अछि। एहि के चलते बहुत रास स्थान पर हल्का वर्षा भ सकैत अछि। वर्षा के समय तेज हवा सेहो चल सकैत अछि। एकर जे संभावना अछि यानी आइ यानी 20 से 22 मई के आसपास सबसे बेसी अछि। एहि अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे के अनुमान अछि, जखन कि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहि सकैत अछि। ओतहि सापेक्ष आर्द्रता के गप करी तऽ भोरे में 70 से 75% आ दोपहरिया में 25 से 30% रहे के अनुमान अछि और एहि पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 14 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना व्यक्त कयल गेल अछि। ती एखन हम सब अहाँके मौसम के बारे में सेहो जानकारी प्राप्त करैत रही।
3: और हम लोग अपने श्रोताओं के लिए कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीज भी लेकर के आते हैं अपने कार्यक्रम में। और जैसा कि
0: तब अहाँ जेना एखन चर्चा करैत रही एक्स्ट्रा चीज लऽ कऽ हमसब अबै छी कार्यक्रम में, तब फिर हमसब अनने छी मिथिला की आवाज। तो यानी अपन जे हमर सबके श्रोता छथि हुनका सबसे जुड़े के एकटा नीक माध्यम अछि मिथिला की आवाज। और मिथिला की आवाज आप अपने सब एखन नमस्कार मिथिला के अंतर्गत सुनैत रही और बीच में एखन किछु दिन से नहीं सुनै ले भेटे छल, मुदा फिर आइ हमसब अन्य छी मिथिला की आवाज। और एहि में हमसब खास व्यक्ति आम व्यक्ति हिनका सबसे गप करै छियनि, हुनका सबसे कोनो खास विषय पर सेहो गप होइत अछि। बहुत रास विषय अछि जाहि पर गप सब होइत अछि और ओकरा मिथिला के आवाज के माध्यम

0: से अपने सबके बीच आने छी और एहिसे बहुत रास जानकारी सेहो भेटैत अछि। तऽ आइ हमसब फेर शुरू केने छी मिथिला के आवाज, तऽ मिथिला के आवाज के किया ने सुनल जाय पहिले।
1: जरूर, तो आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, मैं आशीष और अभी मेरे साथ हैं अमित मिश्रा जी। अमित जी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और इनका जो सफर रहा है मिथिला से मुंबई और फिर मुंबई से दरभंगा तक का सफर रहा है, तो इस पूरे सफर के बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दीजिए।
3: पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इसके लिए चुना है। मेरा जो बर्थ है ये यहाँ का ही है, दरभंगा में कहरिया गाँव है क्योटी प्रखंड में, और बेसिक स्कूलिंग से लेके मेरा जो 12वीं तक का जो पढ़ाई हुआ है वो ये दरभंगा के MLSM कॉलेज से हुआ है। उसके बाद पिताजी मुंबई रहते थे तो हुआ चलो यहाँ तो कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है रोजगार के या स्टडी के, तो आ जाओ वहाँ पे। और मुंबई यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन का तैयारी किया, CA की तैयारी की भी कोशिश की बट सफल नहीं हो पाया मैं, लेकिन लगा कि कुछ करना चाहिए, मुंबई में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो हमने एज ए टैक्स कंसल्टेंट अपना काम शुरुआत किया और धीरे धीरे धीरे वो एक चला गया कंस्ट्रक्शन में, फाइनेंस में, और फिर अब ऐसा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन ही मेरे लिए बना हुआ था और मैं अभी या तो उसने मुझे चुना है या मैंने उसको चुना है ये पता नहीं, बट अब कंस्ट्रक्शन में मन लग गया है और काम कर रहे हैं।
2: मुंबई से फिर दरभंगा की तरफ रुख कैसे करना हुआ?
3: दरभंगा तो होम टाउन है, घर है मेरा, तो हर साल आना ही होता है, बट जब एयरपोर्ट बना तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और उस समय जब कोविड हुआ था तो मेरी दादी का देहांत हो गया था, 2 महीने रहने की मुझे यहाँ पे जरूरत थी तो मैं रुका था, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोर किया दरभंगा में, तो मुझे कुछ अपार्टमेंट कल्चर यहाँ तो था बट उतना कुछ ढंग का दिखा नहीं, तो कुछ मेरे यहाँ लोकल मित्र थे तो मैंने उनसे बात किया तो बोले हाँ यहाँ कुछ करना तो चाहिए, तो फिर हमने जगह ढूंढा तो शहर में तो जगह बहुत छोटे छोटे जगह थे, तो मुझे जो चाहिए था जो एमिनिटीज बनाना वो पॉसिबल नहीं था, तो हाईवे पे एक जगह एक्सप्लोर हुआ तो हमने उस पर एक परिकल्पना जो है डिजाइन किया और फिर उसको हमने बनाया और अभी लोग रहने भी आ गए हैं, लोग खुश हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैंने जो सोचा था वो जमीन पर उतर गया है, और दरभंगा तो हमेशा दिल के करीब रहेगा क्योंकि मेरा घर है। तो
2: अंतर को देखें तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस?
3: दरभंगा की तुलना मुंबई से तो पॉसिबल ही नहीं है, बट अब बहुत हद तक जो लाइफस्टाइल है लोगों ने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है और परिवर्तन की तरफ बढ़ गया है। अब दरभंगा में भी मुझे लगता है कि कोई ऐसी ज्वेलरी का ब्रांड देखिए या फिर आप कपड़े का ब्रांड देखिए या कुछ भी चीजें देखिए तो अवेलेबल है, डिजिटल दुनिया है, सारी चीजें अवेलेबल है, लोगों को यहाँ पे सब सुविधा मिल रही है, तो दरभंगा अब दूर नहीं है क्योंकि अब तो एयरपोर्ट होने की वजह से आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कलकत्ता 2 घंटे की दूरी पे है, और दरभंगा का विकास जो है अब बहुत बढ़िया मतलब गति पकड़ लिया है, और मुझे लगता है कि अब तो ये एम्स वगैरह भी बन रहा है तो बहुत ज्यादा इसका विकास हो रहा है, आने वाला 5 साल जो है वो दरभंगा का है।
2: और जिस वक्त आप यहाँ से गए थे और जब लौट के आए हैं तो लोगों की सोच में क्या अंतर अब देखने को मिल रहा है?
3: जिस वक्त हम गए थे उस समय और अभी में सोच मतलब बहुत सारे मायने होते सोच के। पहले लोग यहाँ पे सोच के भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, हेल्थ केयर नहीं था, तो लोग क्या सोचेंगे, जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट अब बहुत सारी चीजें हो गई है तो अब लोगों का सोचना हो गया है कि नहीं अब दरभंगा भी जो है रहने लायक है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग मेरे परिचय में, जैसे मैंने ये बनाया अपार्टमेंट इसी में बहुत ऐसे लोग हैं जो महानगर से रिटायरमेंट होके और यहाँ पे रहने के लिए रह रहे हैं कि भाई इसी बहाने में कम से कम शहर की सुविधाओं का लाभ भी लूंगा और अपने गांव से करीब भी रहूंगा।
2: क्या लगता है, खास करके अभी आप होटल इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं दरभंगा में 5-स्टार होटल ला रहे हैं, तो इसका विचार कैसे आया?
3: मैं अभी बताया ना कि लोगों को यहाँ पे अब जो है बदलाव चाहिए, होटल इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे है ऐसा नहीं है, बट जो एक बहुत लोग हैं मेरे बहुत सारे संपर्क में मित्र लोग, डॉक्टर से लेके सारे व्यवसायिक जो है यहाँ पे या फिर जो वर्ग है बिजनेस क्लास से लेके जो भी ब्यूरोक्रेट्स, मतलब बहुत सारे वर्ग है जिनको मतलब अच्छा एक क्लास क्वालिटी होटल चाहिए था, तो वो बोलते हैं हमको कलकत्ता जाना पड़ता है, सिलीगुड़ी जाना पड़ता है या फिर काठमांडू जाना होता है, तो यहाँ पे वो एक अमेनिटीज नहीं है मतलब, तो हमने बोला चलो भाई फिर ऐसा करते हैं कुछ ब्रांड की तैयारी करते हैं, फिर पहले तो जमीन एक्विजिशन हुआ, फिर बाद में ब्रांड से बात हुई, ब्रांड ने भी रिसर्च किया तो उसको भी लगा कि नहीं भाई ये ड्राई एरिया है यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि अपना जो दरभंगा सिटी है एक मिथिलांचल का राजधानी हम बोलते हैं इसको, सांस्कृतिक राजधानी भी है बिहार की, तो यहाँ पे टूरिज्म जो है जनकपुर की वजह से भी काफी भी होने वाला है, तो लोगों को एक अच्छा चीज चाहिए था, तो हमने बोला नहीं इसको हम लोग करते हैं, और अभी काम हमारा शुरू हो गया है 2 साल में, कोशिश है 2026 तक इसको हम लोग चालू करेंगे, बाकी यहाँ का जो सपोर्ट लेबर से लेके सारी चीजों से लेके मिलेगा हो जाएगा, बाकी मौसम भी यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्टर है काम करने के लिए, ठंड में बहुत ठंड होता है, गर्मी में बहुत गर्मी होता है, बारिश में बाढ़

0: तो थोड़ा सा प्राकृतिक प्रकोप तो है हमारे पे, उस सबको बाधाओं को दूर करके हमें आगे जाना है, तो करना है सर।
1: जी धन्यवाद। निश्चित तौर पर अपन सबके दरभंगा मिथिला बढ़ रहल अछि, और ई बढ़ैत मिथिला के पहचान अछि कि लोक जे बीच में एकटा गैप बनि गेल छल कि लोक एतय से अहाँके किछु बाहर रहै छल, आब एतय काज धंधा शुरू कऽ रहल छथि और देखा पड़ि रहल अछि कि आब कोनो एहन ब्रांड नहि हुए जे एतय हमर अगल बगल में अपना सबके नहि देखा पड़ैत अछि, कोनो एहन लोक नहि हुए, आब एनाइ जेनाइ आसान भेला से लोक आब आसानी से अबै छथि और अपन व्यापार व्यवसाय सेहो स्थापित कऽ रहल छथि। सएह कारण अछि कि आइ हम देख रहल छी कि 50 से बेसी स्टार्टअप खाली दरभंगा के क्षेत्र के आसपास में अहाँके कार्यरत भेलत है, तो कतौ न कतौ ई बदलैत मिथिला के पहचान अछि, और इएह बदलैत मिथिला के पहचान हमरा अहाँके आगू बढ़ेबाक अछि। हमरा अहाँके जे मिथिला देश विदेश में अपन परचम अपन पहुँच बनेने छल वएह पहुँच फेर से बनि रहल अछि, तऽ ई खुशी के गप अछि और इएह पर आगू बढ़बाक अछि, ओना कार्यक्रममे सेहो हमरा सबके आगू बढ़बाक अछि।
2: हाँ सही बात है कि हम लोग आगे विकास की तरफ जा रहे हैं और आगे हमारा संस्कृति भी जहाँ भी है, जैसे कि मतलब इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा हम लोग का प्रचार प्रसार हो ही रहा है और उसको दिखने के लिए मिलता है, तो अब यहाँ लोग आकर के जो देखे हैं वो यहाँ आकर के भी रहना चाहते हैं और रहेंगे ही, क्यों नहीं। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने श्रोता को एक गीत संगीत की तरफ, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: आओर जेनाकि हमसब किछु चर्चाके शुरुआतमे यानी सुविचारमे केने रही कि आन्तरिक गुण जरूरी अछि, तऽ आन्तरिक गुणके लेल शिक्षा जरूरी अछि। हम अहाँ जा धरि शिक्षित नहि होयब, जा धरि शिक्षा ग्रहण नहि करब, ता धरि हमसब किछु नहि कऽ सकै छी। बिना शिक्षित अहाँ आगू नहि बढ़ि सकै छी, बिना शिक्षाके अहाँ कोनो काज नहि कऽ सकै छी, किएकि शिक्षित होयब तखने अहाँके पता चलत कोन चीज नीक अछि, कोन चीज खराब अछि, आओर शिक्षित होयब तखने अहाँके पता चलत कि कोनो काजके केना कोन ढङ्गसँ कयल जाय, आओर केना हम दोसरके सङ्गे प्रस्तुत भऽ सकै छी, दोसर सङ्गे गपशप कऽ सकै छी। आओर जखन ई गुण विकसित होयत तखने अहाँ समाजमे से अपन स्थान बना पायब, आओर जखने स्थान बनत तखने अहाँ आगू बढ़ि सकै छी।
1: बिल्कुल सही कहा अपने आशीष। आओर शिक्षा अब जो है से दो तरीकासँ हम लोग को मिलने लगा है, एक है ऑनलाइन शिक्षा और दूसरा है ऑफलाइन शिक्षा। जी हाँ, आज के आधुनिक युग में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले तो शिक्षा केवल विद्यालय और मध्य विद्यालय तक ही सीमित थी, लेकिन इंटरनेट और तकनीक के विकास के कारण अब ऑनलाइन शिक्षा भी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। COVID-19 महामारी के समय से ऑनलाइन शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। देखें तो वर्तमान समय में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षा की अपनी अपनी एक महत्व है, इसलिए इनके लाभ और फायदा दोनों हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें ऑनलाइन शिक्षा का क्या है, तो ऑनलाइन शिक्षा

वह शिक्षा है जिससे विद्यार्थी घर बैठे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप और इंटरनेट की सहायता से घर बैठे पढ़ाई करते हैं। इसमें वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, डिजिटल नोट और वर्चुअल मीटिंग का उपयोग भी किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात करें तो हम लाभ इसका क्या है, तो हमें समय बचता है, विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं जिससे आने जाने का समय का बचत होता है, सुविधाजनक शिक्षा हासिल करते हैं और किसी भी समय और किसी भी स्थान पर पढ़ाई की जा सकती है। कम खर्च, यात्रा और अन्य खर्चों को भी कम हो जाता है। तकनीक ज्ञान और वृद्धि विद्यार्थियों को डिजिटल ज्ञान में बदल देता है। रिकॉर्ड क्लासेस विद्यार्थी बाद में भी इसको देख करके चला करके पढ़ाई फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन शिक्षा की हानि तो इंटरनेट और मोबाइल पर अधिक निर्भरता रहनी पड़ती है। विद्यार्थियों के पास अच्छी तकनीक सुविधा होनी चाहिए।

0: रिकॉर्ड क्लासेस विद्यार्थी बाद में भी इसको देख करके चला करके पढ़ाए फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन शिक्षा की हानि तो इंटरनेट और मोबाइल पर अधिक निर्भरता रहनी पड़ती है। विद्यार्थियों के पास अच्छी तकनीक सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब है ऑनलाइन शिक्षा में हमें किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँख और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क कम हो पाता है जिससे ध्यान भटकने की संभावनाएं अधिक रहती है। ये सब थे ऑनलाइन के। अब जानते हैं ऑफलाइन में क्या हमें ऑफलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जिसे विद्यार्थी विद्यालय कॉलेज या संस्थानों में जाकर के शिक्षा हासिल करते हैं। ऑफलाइन शिक्षा क्या है? लाभ सीधे संवाद शिक्षक और विद्यार्थी अपने सामने बातचीत कर सकते हैं। अनुशासन का विकास विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के अनुशासन लाता है। सामाजिक विकास मित्रता खेलकूद और समूह गतिविधियों से व्यक्तित्व का विकास होता है। बेहतर समझ कठिन विषयों पर शिक्षक तुरंत उसे समस्या को सुलझाते हैं। एकाग्रता में वृद्धि कक्षा में वातावरण पढ़ाई के लिए अनुकूल होता है। ऑफलाइन शिक्षा हानि है जो आने जाने में समय और खर्च अधिक होता है। कभी कभी बड़ी कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों पर ध्यान टीचर शिक्षक नहीं दे पाते हैं। मौसम या अन्य समस्याओं के कारण आप पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। पढ़ाई का समय निश्चित होता है ऑफलाइन में। अगर हम बात करें ऑफलाइन और ऑनलाइन में शिक्षा में अंतर तो ऑनलाइन शिक्षा में हम घर बैठे पढ़ाई करते हैं। इंटरनेट अवश्य चाहिए। समय के लचीलापन डिजिटल माध्यम कम प्रभाव प्रत्येक समय में है कि इसमें है कि ऑनलाइन में है कि अगर आप रिकॉर्ड करके रख लेते हैं जब आप समय करते हैं या कहीं काम धंधा करते हैं तो उन सब को निपटा करके आप बैठ करके घर में आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। पर ऑफलाइन में ऐसा होता है कि हमको वहाँ जाना ही पड़ता है और जब तक हम वहाँ जाएंगे नहीं तब तक वहाँ से कुछ हासिल कर नहीं पाते।
1: मनोज अखन अपने जना जे हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षा के स्तर के देखते रहिए एक कह सके छी खास कर के कोरोना महामारी के बाद क्लासरूम जे ओहिसँ पहिले हमसब ऑनलाइन शिक्षा के दिशा में बहुत बेसी जागरूक नहीं रही। ओकर बाद से हमसब सीधा जे क्लासरूम से निकल के जे शिक्षा से मोबाइल और लैपटॉप में आबि गेल। अब बहुत आदमी के मन में रहै छन कि ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा तो सबसे पैघ गप जे ऑफलाइन शिक्षा के कि ऑफलाइन शिक्षा में जे बच्चा इसकुल कॉलेज जाए छथि तो एक दूसरा से जुड़े छथि एकटा सामाजिक ताना बाना बनै छथि ओ एक दूसरा से अहाँ के हेल्दी कंपटीशन करै छथि यानी कि सकारात्मक तौर पर आगू बढ़े के एक दूसरा के संगे हुनका प्रेरणा भेटै छनि और प्रैक्टिकल करै छथि खेलकूद करै छथि लैब वर्क करै छथि और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सेहो हिस्सा लै छथि कतौ न कतौ ओ बच्चा के सर्वांगीण विकास होइत अछि। ओ अहाँ के पढ़ाई के संग संग हुनकर सामाजिक विकास सेहो होइ छनि और बच्चा सीखै छथि कि केना एक दूसरा से व्यवहार करबाक चाही और केना समाज में रहबाक चाही। और जखन अहाँ के स्कूल से घर अबै छथि या फिर अबै जाय के क्रम में रास्ता पर चलनाइ भेल या फिर कोन तरीका से केना हम किछु कोनो अगर समस्या अबैत अछि तऽ अपना में केना निपटाबी तऽ ई सब चीज कतौ न कतौ अहाँके ई ऑफलाइन शिक्षा में भेटैत अछि। मुदा अगर ऑनलाइन शिक्षा में ई चीज के अभाव भऽ जाइत अछि ऑनलाइन शिक्षा ई निश्चित अछि कि समय बचैत अछि क्योंकि अहाँ जे कतौ अबै छी जाइ छी ताहि मे जे समय लगैत अछि तऽ ओ समय बचैत अछि अहाँ अपन मोन से पढ़ाई कऽ सकै छी जखन मोन हुआ पढ़ाई केलहुँ जे चीज के अगर अहाँ एक बेर में नहि बुझि सकलहुँ तऽ ओकरा फेर अहाँ सेव कऽ के राखि लेलहुँ बाद में फेर देख लेलहुँ और एकर लागत सेहो कम भऽ जाइत अछि क्योंकि बहुत सस्ता सुलभ होइत अछि ऑनलाइन शिक्षा तो एक ठाम से अहाँके देश विदेश में रहि के कतौ कयल जा सकैत अछि ताहि लऽ कऽ ओकर लागत कम होइत अछि और लोग घर बैसल बच्चा आइ के समय में सीख रहल छथि। मुदा अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन के गप करी तऽ ऑनलाइन के सबसे एकटा जे ड्रॉबैक अछि यानी खराबी जे अछि कि बच्चा पैसिव लर्नर

0: बनि जाइ छथि। ओ ई बुझैत रहै छथिन कि हम पढ़ि रहल छी, हम सीख रहल छी, हम पढ़ि रहल छी, हम सीख रहल छी। ओ लगातार अपने आपके बुझऽ लगै छथिन कि हमरा सब किछु आबि गेल। हुनकर सामनेमे कम्पिटिशन खत्म भऽ जाइ छनि। अगर अहाँके जे ऑनलाइन एखन अहाँके टेस्ट सीरीज सब अछि हो तऽ ओहोमे ओ पेशीवे ढङ्गसँ आगू बढ़ै छथि। धीरे धीरे हुनका लागऽ लगै छनि कि हम सब चीज कऽ लेलहुँ, मुदा जखन ओ एग्जामिनेशन सेन्टरपर जाइ छथि वा कोनो एहन ठाम मञ्चपर पहुँचै छथि तऽ ओतऽ ओ हुनकर जे आत्मविश्वास छनि से डगमगा जाइ छनि। आओर ओहने ऑनलाइन देखबै अहाँके परीक्षामे अगर किछु कोनो कम्पिटिशनवला परीक्षा होइत अछि तऽ एहन बच्चा ओहि कालमे अबितो क्वेश्चनके ओ नहि जवाब दऽ पबै छथिन। तऽ ई एकटा बहुत पैघ खराबी अछि ऑनलाइन शिक्षाके। मुदा ऑफलाइन शिक्षामे एक दूसरा बच्चाके बीचमे कम्पिटिशन होइ छनि तऽ हुनकर भीतर एकटा नवका ऊर्जाके सञ्चार रहै छनि। ओ अगर किछु एहिबेर अहाँके कोनो नम्बर कम अयलनि तऽ अगिला बेर ओ अहाँके लागि जेतै तऽ हुनकासँ बेसी नम्बर अनेक अछि। ई सकारात्मक जे प्रतिस्पर्धा अछि से ऑफलाइन अहाँके शिक्षा व्यवस्थाके सबसँ पैघ ताकत अछि। ताहि दुआरे ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा कोनो तरीकासँ ग्रहण कयल जा सकैत अछि। अगर अहाँ लग व्यवस्था अछि तऽ अहाँ ऑफलाइन शिक्षा सेहो लऽ सकै छी। अगर अहाँके कोनो दिक्कत हुए या फेर अहाँ चाहै छी कि ओतऽ व्यवस्था ओहि स्तरके नहि अछि तऽ अहाँ ऑनलाइन शिक्षाके दिशामे सेहो आगू बढ़ि सकै छी। दुनू शिक्षाके अपन महत्व अछि। अपन दुनू शिक्षामे कोनोमे नीक कोनोमे खराब ओ सबसँ नहि रहैत अछि, नीक बेजाय दुनू ठाम होइत अछि। तऽ ओकरा देखैत मुदा निर्भरता जे रहै से निर्भर अपन स्तरसँ देखैत अहाँ आगू बढ़ब तऽ निश्चित तौरपर शिक्षित हेबे करब। ओना ऑनलाइन शिक्षामे जे अभिभावक छथि तिनका कनि ध्यान बेसी दिअ पड़ै छनि बच्चा सबके कि ओ शिक्षा अपन स्तरसँ अहाँके नीक तरीकासँ कऽ रहल छथि कि नहि कऽ रहल छथि। कियाकि ऑफलाइन शिक्षामे शिक्षक जे रहै छथिन सेहो एकटा अभिभावकके तौरपर ओतऽ उपस्थित रहै छथिन, मुदा ऑनलाइन शिक्षामे अहाँके अभिभावकके कनि बेसी ध्यान देबाक चाहियनि। तऽ ओना कार्यक्रममे हमहूँ सबके ध्यान राखै छी कि समयके सङ्गे हमरा सबके चलबाक रहैत अछि। तऽ समसामयिक चर्चाके घटना सबके बारेमे कनि चर्चा कऽ ली। पंचायत सबके सहयोगसँ शिविर लगाओल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोनपुरके डुमरी बुजुर्ग पंचायतमे एकर शुभारम्भ केलथि। आब अधिकारी सबके 30 दिनमे समाधान करऽ पड़तनि कोनो समस्याके। आओर रूसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12 सितम्बरके भारत औतत। आओर आइ देश भरिके केमिस्ट यानि कि दवाइ दुकानदार सब जे छथि से हड़ताल पर रहतथि। तऽ हमसब एखन अहाँके किछु ई समसामयिक घटना सबके बारेमे कनि जानकारी प्राप्त करैत रही। आओर चलैत चलैत किया ने अपन श्रोता सबके फेर एकटा गीत सुनबियनि।
1: जरूर आइए सुनते इस प्यारे से गीत।

0: नमस्कार मिथिला, यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे थे।
1: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध, जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
2: जनकपुर जाने के लिए आए,
1: कभी खरीदारी भी करते हैं।
3: हिंदी वाला सामान किनना लाए।
1: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।

0: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
1: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
1: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथी सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
2: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आर्यन हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के

0: बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.
5: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े।

0: आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
4: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
5: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस

0: राष्ट्रीय चैंपियनशिप में तीसरा स्थान जबकि पाटिल ने पांचवा स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में एक वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni

0: मोदी इटली के अपने पहले बाहमी दौरे पर कल रात रोम पहुंचे, जहां वो अहम शोबों में मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इनमें तिजारत, दिफा, मोबिलिटी, बहरी सिक्योरिटी, बंदरगाहों से मुतालिक इश्तराक और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो तजानी के हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। बाद में इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने जनाब मोदी के एजाज में एक जियाफत का अहतमाम किया। इसके बाद जनाब मोदी अनंतारा प्लाजो नईदी होटल पहुंचे, जहां भारत निजाद अफराद ने खुशी का इजहार करते हुए गर्मजोशी और पुरतपाक अंदाज से जनाब मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी पुरजोश भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इटली के एक आर्टिस्ट जियांपाओलो टोमासेटी की एक पेंटिंग की नकाब कुशाई भी की, जो वाराणसी के घाटों और भारत के कदीम और दायमी शहर की सकाफती और रूहानी झलक पेश करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनाब मोदी आज क्यूरिनल पैलेस में इटली के सदर सर्जियो मटरेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। जनाब नरेंद्र मोदी की आज की मसरूफियात में वफूद की सतह की बातचीत, प्रेस बयान, मुफाहमत नामों का तबादला, दो तरफा मीटिंगें और खुराक और ज़राअत की तंजीम का दौरा भी शामिल हैं। जनाब मोदी ब्लैक मलबरी का एक पौधा भी लगाएंगे, जो खाने, तिब्बी और उसकी सकाफती अहमियत के जरिए भारत और इटली को अलामती तौर पर मुनसलिक करता है। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: इससे पहले कल भारत और नॉर्डिक मुल्कों ने अपने बाहमी ताल्लुकात को ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराई कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने का ऐलान किया। इन मुल्कों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक सरबराह इजलास में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के रहनुमाओं के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान भारत में नॉर्डिक मुल्कों की सरमायाकारी में 200% का इजाफा हुआ है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हालिया तिजारती समझौतों के साथ एक नए सुनहरे दौर में दाखिल होंगे, जिसमें तिजारती और इक्तसादी साझेदारी नीज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का माहदा भी शामिल है। दहशतगर्दी के मामले पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मामले पर दोनों मुल्कों का वाज़ेह और मुश्तरका मौक़िफ़ है, कोई समझौता नहीं और कोई दोहरा मेयार नहीं।
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: पेश है वजीर आजम के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
3: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी

मुताबिक एयर इंडिया के इस तैयारे VT-NX को इस साल 2 फरवरी को जमीन पर उतार लिया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू सहाफत में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से

0: की वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिला इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC हेडक्वार्टर्स में होगा। तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर इम्तिहान देने वाले तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ मरहले में पहुंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का बड़ा निशाना महज 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 5 गेंदों का खेल बाकी था। उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 38 गेंदों पर तेज रफ्तार 93 रन बनाए, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर-ए-आज़म के 2 रोज़ा नॉर्वे दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, भारत नॉर्वे तजारती और तहकीकी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि नॉर्वे और भारत के दरमियान मुतअद्दिद शोबों में तआवुन के वसी इम्कान और हमारे मुल्क में ग़िज़ाई सिक्योरिटी माही परवरी जैसे शोबों में पार्टनरशिप के मौके मौजूद हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, भारत और वियतनाम के रहनुमाओं ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम सलामती और समंदरी रास्तों की आज़ादी बरकरार रखने के अजम का इरादा किया। इसी अखबार ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, भारत और नॉर्डिक ममालिक ने दहशतगर्दी पर नो कॉम्प्रोमाइज नो डील स्टैंडर्ड का पैगाम दिया।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा भारत मगरबी एशिया यूरोपीय इक्तिसादी कॉरिडोर के बारे में तआवुन बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे और 2025 से 2029 तक के मुश्तरक कलीदी अमली मनसूबे का जायजा लेंगे। मगरबी बंगाल सरकार 1 जून से अन्नपूर्णा स्कीम शुरू करेगी, जिसके तहत 25 से लेकर 60 साल तक की खवातीन को 3,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने कहा कि लोकसभा और असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी और भारत की GDP की शरह तरक्की में 1.6% तक का इजाफा हो जाएगा। और IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है, थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
3: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान,
4: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
3: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच, शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
4: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विवाह और आपदा की स्थिति में टाउनशिप क्षेत्र में हो सकेगी जमीन की खरीद बिक्री, जिलाधिकारी को देना होगा आवेदन। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। पटना के ईशान किशन की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चयनित। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में किसी की जमीन टाउनशिप के लिए अधिग्रहित होने की स्थिति में संबंधित परिवार को विवाह या आपदा की स्थिति में जमीन बेचने के लिए जिलाधिकारी को आवेदन देना होगा। सोनपुर प्रखंड की डुमरी बुजुर्ग पंचायत में एक कार्यक्रम के तहत लोगों को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवेदन की जांच के बाद संबंधित व्यक्ति को जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा।
1: इस इलाके में एक नया टाउनशिप बनाने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथियों। इस इलाके को समृद्ध करना है। कुछ लोगों का शिकायत हमें मिला कि यदि टाउनशिप में हमारा जमीन चला गया, हमारे घर में बेटी की शादी करनी है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं, हमारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं। जिन लोगों को भी घर में विपदा आपदा या बेटी की शादी करनी होगी, आप जिलाधिकारी को आवेदन दीजिएगा, 4 गुना पैसा आपके घर में और आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम।
0: इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल के रूप में सरस्वती विद्या निकेतन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में सीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन के पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने ये निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा के संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का ठीक ढंग से अनुपालन करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीमा पर निगरानी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। साथ ही सीमा पर होने वाले अनैतिक और गैर वैधानिक कार्यों पर पूरी सख्ती बरतें। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बीती फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 264 नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले यह चुनाव

0: 15 से 25 अप्रैल तक संपन्न कराए जाने के बाद अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिए गए थे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार से बीजों पर अनुदान बढ़ाने की मांग की है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कृषि क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री सिन्हा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दलहन और तिलहन फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी अनुरोध किया। कृषि विभाग ने कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 12 नए कृषि यंत्रों पर भी अनुदान देने का फैसला किया है। इसके तहत सौर ऊर्जा आधारित तकनीक और उच्च क्षमता वाली मशीनों, सौर धान थ्रेसर, छोटा धान कंबाइन हार्वेस्टर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जैसे आधुनिक उपकरणों को शामिल किया गया है। वहीं कई पारंपरिक और छोटे उपकरणों को योजना की सूची से हटा दिया गया है। प्रदेश में आज शाम 7 बजे से 22 मई सुबह 8 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। नॉर्थ और साउथ बिहार पावर कंपनियों की ओर से नई बिलिंग प्रणाली तैयार करने के मकसद से ये सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। ऊर्जा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। इस अवधि में बिजली बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज और नया बिजली कनेक्शन समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगे। ऊर्जा मंत्री और किशनगंज जिले के प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने कहा है कि किशनगंज में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। किशनगंज में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि जिले में 22 पावर सब स्टेशन PSS काम कर रहे हैं, वहीं 10 अन्य PSS को विकसित करने पर कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि सभी PSS के कार्यशील होने के बाद जिले में विद्युत आपूर्ति की कोई समस्या नहीं रहेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर से ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेवीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आज देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हालांकि इस दौरान सभी प्रमुख फार्मेसी श्रृंखलाएं, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को

0: फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश के आसार हैं। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार और पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रोहतास के डेहरी का अधिकतम तापमान 41.4, छपरा का 40.6 और पटना का अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय रेल ने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश के गंगा तट पर स्थित सभी मठ और मंदिरों में प्रतिदिन गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने इस संबंध में सभी मठ मंदिरों के महंत, न्यासधारियों, न्यास समिति के सदस्यों और प्रबंधकों को पत्र भेजा है। प्रोफेसर नंदन ने बताया कि परिषद से संबद्ध मठ मंदिरों में गंगा आरती की शुरुआत 25 मई को गंगा दशहरा के अवसर से होगी। मधुबनी जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र से वाहन जांच के दौरान पुलिस और एसएसबी की टीम ने 191 किलो से अधिक गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने अनुसंधान में लापरवाही बरतने के आरोप में मधुबनी SC/ST थाना के प्रभारी रविंद्र राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पटना जिले के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7,480 बोतल कोडीन युक्त सिरप के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में प्रदेश के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है। इधर शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 93 रनों की पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में NEET UG की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग ने कहा है कि विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों से 100 विद्यार्थी इस इंटर्नशिप में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को समाज और

मानवाधिकार मुद्दों के प्रति निष्पक्ष और अधिक संवेदनशील बनाने में मदद करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने सहयोग शिविर से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पंचायतों के सहयोग शिविर में सुनी गई समस्याएं। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की हिदायत को अपनी प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है, 15 अगस्त के बाद बिना वजह रेफर नहीं, केवल गंभीर मरीजों को ही बड़े अस्पतालों में भेजें। दैनिक जागरण लिखता है, क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन को मंजूरी। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, व्हाट्सएप पर भी ईपीएफ बैलेंस और लेन देन की मिलेगी जानकारी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राज्य के 208 प्रखंडों में खुलेंगे नए डिग्री कॉलेज, 9152 पदों पर भर्ती। आज अखबार लिखता है, 12 सितंबर को भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, विवाह और आपदा की स्थिति में टाउनशिप क्षेत्र में हो सकेगी जमीन की खरीद बिक्री, जिलाधिकारी को देना होगा आवेदन। प्रदेश के सभी नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति के चुनाव 26 से 31 मई के बीच होंगे। पटना के ईशान किशन की 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच और एक दिवसीय श्रृंखला के लिए चयनित। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कई स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल।
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए।

आकाशवाणी दरभंगा। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। साहित्य, संस्कृति और कला केर उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहि सं गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भर तुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30।
3: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अगला प्रसारण हमारे पटना केंद्र से है।

उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर का ये कलाम, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में। सामईन, हमारा मुल्क भारत जैसा कोई मुल्क नहीं है। अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने अपनी नज्म में बयान फरमाया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। जी हाँ दोस्तों, शायर ने हमारे मुल्क को गुलिस्तां की मानिंद बताया है। जी हाँ, गुलिस्तां यानी फूलों का बाग जहां अलग अलग किस्म के फूल खिलते हैं। किन्हीं फूलों की नस्ल कुछ है तो किन्हों की कुछ और है। ठीक इसी तरह हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ मजाहिब के लोग भी रहते हैं। हमारे मुल्क

0: जहां एक तरफ दिवाली मनाई जाती है तो वहीं बड़ी खुशियों के साथ ईद भी मनाई जाती है। कहीं भजन कीर्तन तो कहीं आजानों की आवाजें भी सुनाई देती है। यहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरिजा घर भी हैं। गर्ज के यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजाहिब के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने मजाहिबों की पूजा अर्चना करते हैं और सभी एक दूसरे से मोहब्बत व मिल्लत के साथ रहते हैं। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे यहाँ कसरत में वहदत बखूबी तौर पर नुमाया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में 20 से जायद बाकायदा तस्लीम शुदा जबानें यानी लैंग्वेजेस, सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। हर रियासत का अपना अलग पहनावा, मौसिकी, रक्स और पकवान है, लेकिन ये तमाम रंग मिलकर एक खूबसूरत हिंदुस्तानी सकाफत बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुल्क में कसरत में वहदत पुरानी तहजीबी, सकाफती और मजहबी रिवायात का अक्कास है। इसका मतलब मुख्तलिफ मजाहिब, जबानों, खानों और रस्म रिवाज के बावजूद हिंदुस्तानी आवाम का एक कौम के तौर पर मुत्तहद रहना है, जो हमारे मुल्क के कसरत में वहदत का जीता जागता सबूत है, जो किसी और मुल्क में नहीं है। तो ऐसे ही नहीं, शायर ने कह दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मकाला, उर्दू गजल गोई में जदीदियत के असरात। मकाला निगार हैं डॉक्टर जरनिगार यास्मीन।
1: उर्दू गजल गोई में जदीदियत के असरात। जदीदियत के अहम रुझानात क्या हैं? इस तहरीक का आगाज कब हुआ और क्यों हुआ? इस तरह की तमहीदी गुफ्तगु के बगैर अपनी इस बात का आगाज करना बेहतर है, ताकि उर्दू गजल पर इस तहरीक के असरात का एक अजमाली जायजा सामने आ सके। मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर किसी भी बातचीत का आगाज करने से पहले ये वाजे कर देना जरूरी है कि यहाँ इजहार ख्याल की दो समतें होंगी। एक तो ये कि उर्दू गजल के मौजूआत पर इस तहरीक का क्या असर हुआ, और दूसरे ये कि गर्चे अगर मौजूआत अपना उसलूब खुद मुंतखब या मुतय्यन करते हैं, मगर असालीब में वाकई कोई तब्दीली आई या नहीं। अगर हाँ तो क्या और किस कदर। इन्हीं दो निकात को लेकर आगे बढ़ती हूँ। सिर्फ ये कह देना भी गलत होगा कि उर्दू गजल की रवायत में इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के ही बयानात मौजूद हैं। मीर के यहाँ गमजात के साथ साथ अपने अहद के जो दुख दर्द मौजूद हैं, उनसे न सिर्फ पूरी उर्दू दुनिया वाकिफ है, बल्कि उनमें से बाज़ बयानात तो आज भी कदरे बामानी और रिलेवेंट हैं कि हैरत होती है। मसलन, मीर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार, और ये शेर देखिए कि सहल सी जिंदगी ये काम के तई अपने ऊपर न कीजिए दुश्वार। गालिब की दूरबीनी तो मशहूर जमाना है, मैं अंदली पे गुलशन नाफरीदा हूँ का दावा सिर्फ दावा नहीं हकीकत है और असलूब भी मुलाजा हूँ। न गुले नगमा हूँ न पर्दे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। तू और आरायश खमे का कुल, मैं और अंदेशे हाय दूर दराज। कौन कह सकता है कि ये अंदाज़े बयां इस तारातो कनाया से खाली है, मगर असल सवाल अपनी जगह रह जाता है कि ये तो जदीद तर्ज फिक्र या तर्ज इजहार के सिर्फ चंद मिसालें हैं। मजमूई तौर पर उर्दू गजल जदीदियत की तहरीक से कब, किस तरह और किस हद तक मुतासिर हुई, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें 1960 के फौरन बाद के शेरी सरमाए का जायजा लेना होगा, क्योंकि यही वो ज़माना है जब तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुतवाजी एक नई अदबी तहरीक या भरपूर रुझान की उर्दू दुनिया में आमद हुई थी। यहाँ एक और नुक्ता जहन में रखना होगा कि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता ज्यादातर उर्दू शायरों ने नज़्म निगारी का फॉर्मेट इख्तियार किया, क्योंकि गजल अपने सदियों पुराने मिजाज के एतबार से उनके मखसूस रुझानात और ख्यालात का बहुत दूर और बहुत देर तक साथ नहीं दे सकती थी। जदीदियत से वाबस्ता शायर के लिए ये मजबूरी इस कदर शिद्दत के साथ नहीं थी, क्योंकि यासो हुरमा नाउमीदी और गमेजात के इजहार की गुंजाइश यहाँ मौजूद थी। बहरहाल, इन निकात को सामने रखते हुए उर्दू गजल पर जदीदियत के असरात तलाश किए जाएं तो आसानी होगी। मैंने इब्तिदा में ही अर्ज कर दिया कि यहाँ जदीदियत के अहम रुझानात और असबाब का तफसील से

जायजा लेने की गुंजाइश और जरूरत नहीं है। इसलिए बस इतना बताकर आगे बढ़ती हूँ कि बढ़ती हुई मशीनी बालादस्ती, तेज रफ्तारी, अदीमुल फुसती और रिश्तों से बेनियाजी वगैरह ने जिस सार्फी निजाम जिंदगी यानी कंज्यूमर्स कल्चर की बुनियाद रखी, उसमें इंसान खुद भी एक मशीन की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। गाँव और छोटे शहरों से हिजरत करके बड़े शहरों के हुजूम में गुम हो गया और आखिरकार तन्हाई इसका मुकद्दर बन गई। माशरे का ये हाल लाजमी तौर पर उर्दू गजल में बयान होना था और हुआ। इस एतबार से देखिए तो अदबी तनकीद का ये नजरिया भी दुरुस्त साबित होता है कि हर अदब अपने अहद और माहौल का तर्जुमान है। साथ ही उर्दू गजल हुस्न इश्क के महदूद दायरे से बाहर भी निकल आई, जो एक खुश आयंद अमल था। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्द की तन्हाई इस अहद का सबसे अहम मौजू था, जिसे कमोबेश हर शायर ने बयान किया। चंद मिसालें मुलाजा हो, भीड़ चारों तरफ मगर तन्हा, लोग रहते हैं उम्र भर तन्हा, कारवां कारवां हर एक मंजर, आदमी आदमी मगर तन्हा। इस तरह हम कह सकते हैं कि गमे कायनात से ज्यादा गमे जात पे तवज्जो इस अहद के शायरों का निशाने इम्तियाज ठहरी। बेएतबारी और तशकीक के पहलू भी उर्दू गजल में जगह पाने लगे और बेचहरगी का एहसास भी उर्दू गजल का एक अहम मौजू बन गया। मोहम्मद अलवी, सुल्तान अख्तर, अमीर हनफी के अलावा शोरा के यहाँ मजहबी तशकीक के पहलू भी उभरे। किसी को हो न सकी मेरी दास्तां मालूम, तमाम उम्र में गूंगे का ख्वाब बन के रहा, कुछ इस तरह से गुजारी है जिंदगी जैसे तमाम उम्र किसी दूसरे के घर में रहा। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, अजीब सानहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साए से कल रात डर गया यारो। खुली फजा में जरा जान व तन से ले चलिए, मुझे निकाल के सांसों के बंद से ले चलिए। इस तशकीक का एक पहलू ये भी है कि मोहब्बत के लतीफ एहसासात भी शक के दायरे में आ गए। जॉन एलिया इसकी सबसे नुमाया मिसाल है, जिन्होंने हर तस्लीम शुदा रवायत पर सवालिया निशान खड़ा किया। मसलन आप मिसरे को देखेंगे कि यही होता है खानदान में क्या, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, हासिल कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में, क्या कहा इश्क जावेदानी ने, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। असलूब की सतह पर उर्दू गजल में अलामतों का कसरत से इस्तेमाल बराह रास्त जदीदियत के असरात का नतीजा है। वैसे भी जिंदगी के तह दर तह तजर्बात एक गहरे अंदाज में बयान नहीं हो सकते थे, मगर गजलगो शायरों ने जिस तरह शौरी तौर पर अलामतों से रिश्ता जोड़ा, उससे उर्दू गजल हमागीर और देरपा मानवियत से आशना हुई। सिर्फ एक शेर पेश करती हूँ जो मानवीय एतबार से बेहद खूबसूरत और देरपा असरात के हामिल है, क्योंकि इसमें न धूप के माने फिक्स किए जा सकते हैं न साया के। शेर देखिए, मैं देर से धूप में खड़ा हूँ, साया साया पुकारता हूँ। यहाँ इन रुझानात के मनफी असरात का भी मुख्तसरन तस्करा जरूरी है। मौजू की सतह पर देखे तो अपने अहद और माशरे के हालात से बेनियाज होकर सिर्फ अपनी जात के मसाइल तक महदूद हो जाना बहुत दुरुस्त नहीं था। मुमकिन है ऐसा तरक्की पसंद तहरीक के रद्द अमल में किया गया हो, मगर एक इंतहा पसंदी का जवाब दूसरी इंतहा पसंदी नहीं हो सकती। दूसरा मनफी असर ये हुआ कि शायरी में ज्यादातर नाउमीदी और मायूसी पर मबनी तजुर्बात व मुशाहदात जगह पाने लगे। इसकी कनूतियत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सूरत जो कुछ भी थी मुआशे के लिए अच्छी नहीं थी। शायर सिर्फ अक्कास नहीं होता, रहनुमा भी होता है। मुमकिन है इस जमाने में अमूमी सूरत हाल मायूस कुन हो, मगर मुकम्मल अदबी रवैया भी ऐसा हो जाए तो फिर नाउमीदी से बाहर निकलने की कोई कोशिश ही नहीं होगी। असलूब की सतह पर भी देखें तो बाज तजर्बे महज तजर्बे या खुदनुमाई के तौर पर किए गए। रवैयों की मायूसी तो खैर लबो लहजा में उतर ही रही थी, मगर एक और पहलू यानी एम्बिग्यूटी या इहाम को लेती हूँ। इहाम गोई की रवायत अपने यहाँ पहले से मौजूद थी,
مگر ایسی نہیں تھی کہ ایمبیگیوٹی کی موجودہ صورت کا احاطہ کر لے۔ دراصل استعارہ اور کنایا سے آگے کی صورتیں عام قاری کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں آتی، مگر یہاں شعوری طور پر ابہام پیدا کرنے کا رویہ اپنی انتہا تک پہنچ کر چستہ بن

ये वक्त जो ठहरा है तुम्हारे लिए आकर तुम इस वक्त में न जाने क्या करो। ये वक्त जो ठहरा है तुम्हारे लिए आकर तुम इस वक्त में न जाने क्या करो, लेकिन मैं वक्त को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मैं वक्त को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। समय गजल पेश कर रहा हूँ। मतलब है, खोए खोए हैं फलसफी की तरह, खोए खोए हैं फलसफी की तरह, लोग जीते हैं अब अजनबी की तरह। खोए खोए हैं फलसफी की तरह, लोग जीते हैं अब अजनबी की तरह। हंस पड़े जब खलिश देहलवी की तरह, मौत हमसे मिली जिंदगी की तरह। हंस पड़े जब खलिश देहलवी की तरह, मौत हमसे मिली जिंदगी की तरह। अगला शेर है, महफिले ख्वाब में जिंदगी रात भर, महफिले ख्वाब में जिंदगी रात भर, रक्स करती रही नर्तकी की तरह। महफिले ख्वाब में जिंदगी रात भर, रक्स करती रही नर्तकी की तरह। आखिर शेर है, किस से कहिए कि साबित हुई रहजनी, किस से कहिए कि साबित हुई रहजनी, जो लगी थी कभी रहबरी की तरह। किस से कहिए कि साबित हुई रहजनी, जो लगी थी कभी रहजनी की तरह। एक और गजल पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएगी। मतलब है, जो मुझको सदा मुस्तरिब दीद करे है, सुन ले है मेरा नाला तो वो ईद करे है। जो मुझको सदा मुस्तरिब दीद करे है, सुन ले है मेरा नाला तो वो ईद करे है। शेर अर्थ है, सोज गम फुरकत में जो फूके है जिगर को, सोज गम फुरकत में जो फूके है जिगर को, बेताबी ये मेरी वही तनकीद करे है, बेताबी पे मेरी वही तनकीद करे है। जो मुझको सदा मुस्तरिब दीद करे है, सुन ले है मेरा नाला तो वो ईद करे है। आखिरी शेर है, जो राह मोहब्बत में फिना होवे है ऐ दिल, जो राह मोहब्बत में फिना होवे है ऐ दिल, हासिल वही तो हस्ती जावेद करे है, हासिल वही तो हस्ती जावेद करे है। आखिरी शेर है, हो जाए है बेगाना वो सारे ही जहाँ से, हो जाए है बेगाना वो सारे ही जहाँ से, उस इश्क में जो कैस की तकलीद करे है, उस इश्क में जो कैस की तकलीद करे है, कि सुन ले है मेरा नाला तो ईद करे। आखिरी गजल पेश कर रहा हूँ तरनीम से, उम्मीद है पसंद आएगी। मतलब है, दिल में तुमको बसा रहा हूँ मैं, दिल में तुमको

अभी आप सुन रहे थे कलामी शायर के तहत रोमान रास्ती से, माजरत नुमान रास्ती से उनका कलाम। आइए सुनते हैं मौसिकी के तहत चंद गज़लें। सबसे पहले सुनते हैं इरशाद कामिल का ये कलाम, ए आर रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान की आवाज़ में।

आबिदा परवीन की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे हज़रत शाह हुसैन का ये कलाम। आइए सुनते हैं अगला कलाम निरा फाजली का। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की।

हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी। आप सुन रहे थे निदा फासली का ये कलाम लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाज़ में। सामेईन हजरात, स्टूडियो की घड़ी ने इशारा दिया है प्रोग्राम को आज यहीं अख्तिताम करने का। फिलहाल आप हमें दीजिए यहीं इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए इस हॉट वेव में चल रही लू में अपना रखें ख्याल, बॉडी को हाइड्रेट रखें, बहुत सारा पानी पिएं और बहुत ज़रूरत रहने पर ही घर से बाहर निकलें। खुदा हाफिज़।

0: श्रोता भी सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहला गाना आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं हम सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म है बॉर्डर।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल और राजेश रोशन का संगीत है। फिल्म लावारिस।

0: फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को अनु मलिक के संगीत में। आवाज उदित नारायण की है। फिल्म दिल जले।
1: क्या हुआ?
2: वो तो
1: क्यूट है ना?
2: अरे पहलवान है।
1: पर तुमसे प्यार करती है।
2: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
2: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
2: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन शान और केके की आवाज में। संगीत है शंकर एहसान लॉय का और बोल लिखे हैं जाबेद अख्तर ने। फिल्म दिल चाहता है।

लोकगीत के इस कार्यक्रम में आज जिन कलाकारों को आपने सुना वो थे धनीराम महतो और साथी दिवाकर सिंह, वंदना सिन्हा, अरविंद कुमार झा, पूनम कुमारी और राखी कुमारी। इसी के साथ लोकगीतों का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारी पहली सभा भी जारी है, कृपया अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे श्रोतों की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं विश्व मोहन भट्ट। आइए इनसे सुनते हैं मोहन वीणा पर राग देश, अलाप विलंबित, द्रुत रचना 3 ताल।

विश्वमोहन भट्ट से अभी आप सुन रहे हैं शास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं मोहन वीणा पर राग सारंग रचना कहवरा ताल।

विश्व मोहन भट्ट से भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में मोहन वीणा पर राग सारंग कहरवा ताल में। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
0: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
0: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
2: जी
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
2: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है। इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
2: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में

0: पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem

0: Just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordination, Buddy Lang Lingdo. Artist, Shalini Singh. Child singer, Angel. Child artists, Navya, Soham, Lavish, Vanya, and Riddhi. Music composition and guidance, Ajit Horo. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Meenakshi Kukreti. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. Dear friends, if you want to give your feedback on our programs, you are most welcome. Contact us on our toll-free number 8800440559. We may be contacted as well on our email address. Our email ID is audio@ciet.nic.in. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम दिक्रो और अब सुनते हैं कार्यक्रम एक पौधा राजू का।
1: इस कार्यक्रम में एक बच्चे के बारे में मनोरंजक ढंग से बताया गया है कि कैसे उसने एक पौधा लगाया, उसकी देखभाल की और अपने मित्रों को भी उसने पौधा लगाने के लिए किस प्रकार प्रेरणा दी।

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
0: दीदी
1: राजू स्कूल से आ गए तुम?
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ, अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा,
2: शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
3: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
3: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
3: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
3: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
3: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
3: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
3: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
3: अरे बेटा
1: चलो बेटा
3: जी। दे
0: चलिए दादाजी।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप आनंद लेंगे हमारे केंद्र से नए फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म द सरली प्रिटी से। गायक कलाकार हैं अभिलिप्सा पांडे। संगीत निर्देशन मनोज ने किया है। गीत लिखा है योगेश पंडित ने।

श्रोताओं, राज बर्मन को भी आप सुन रहे थे फिल्म मिशन मंजू में। गीत लिखा था रोहित शर्मा ने, संगीत दिया था राघव सचर ने। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सन ऑफ सरदार 2 से। गीतकार हैं जानी, गायक कलाकार विशाल मिश्रा, संगीत निर्देशन विशाल मिश्रा ने किया है।

फिल्म स्टारफिश का यह गीत अभी आप सुन रहे थे तुलसी कुमार और मनन भारद्वाज की आवाज में। गीत और संगीत मनन भारद्वाज के थे। आइए सुनते हैं एक और गीत इसी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। गीतकार हैं अंकुर तिवारी, संगीत दिया है सवेरा ने।

अभी आप सुन रहे थे स्टारफिश का यह गीत सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाज़ में। गीत लिखा था कुमार ने और इस गीत को धुन दिया था सचेत परंपरा टंडन ने। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राघव अर्जुन और राघव चैतन्य की आवाज़ में फिल्म वेदा से। गीतकार हैं राघव और अर्जुन, संगीत दिया है राघव और अर्जुन ने।

हरमनजीत के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हीर एक्सप्रेस से, आवाजें थी सिमर कौर और नवी शरण की, संगीत दिया था अव्य शरा ने। इसी के साथ नए फिल्मी गीतों का सिलसिला भी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

बहनों, मधुमक्खी कीट वर्ग का सामाजिक प्राणी है जो स्वयं के बनाए हुए मोम के छत्ते में समूह बनाकर रहते हैं, जिसमें एक रानी, कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खियां दुनिया की लगभग 75% फसलों के परागण में मदद करती हैं। श्रोताओं, यह अपने पूरे जीवन में केवल थोड़ा सा शहद बना पाती है, लेकिन पूरे झुंड मिलकर बहुत सारा शहद बना लेती है। श्रोता बहनों, शहद सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोता बहनों, हर छत्ते में तीन प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक मादा मधुमक्खी होती है जिसे रानी भी कहते हैं, दूसरा नर मधुमक्खी और तीसरा फल फूलों से रस चूसकर एकत्रित करने वाली श्रमिक मक्खियां। तो बहनों, आगे पुनः हम बात करेंगे आपसे। आइए पहले सुनते हैं ये प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

बहनों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नारी संसार और मैं लालती। आइए पुनः हम कुछ बातें करें। विषय है महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, खुलकर बात जरूरी। प्यारी बहनों, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कुछ कारणों से अधिक होने की संभावना होती है, जिनमें गरीबी का अनुभव करना, हिंसा से बचना, घर पर तनाव से निपटना इत्यादि मुख्य कारक होते हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य एक बहुआयामी मुद्दा है और इस पर खुलकर बात करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, महिला स्वास्थ्य संबंधी कुछ प्रमुख कारकों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने की कमी, शिक्षा की कमी, खराब पोषण और असुरक्षित गर्भपात शामिल है। शारीरिक स्वास्थ्य हो व मानसिक स्वास्थ्य, देखभाल अत्यंत आवश्यक है बहनों, क्योंकि किसी भी परिवार या समाज की उन्नति तभी संभव है जब पुरुष के साथ साथ महिला भी स्वस्थ हों। श्रोताओं, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाली स्त्री कुशल और आत्मविश्वास से भरपूर होती है। वह अपने अस्तित्व पर नाज करती हैं और जीवन का आनंद उठाती हैं। वह सदैव और निरंतर उठने वाली नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, अवसाद, क्रोध, नाराजगी, घृणा और ईर्ष्या या असहज भावनाओं से परेशान नहीं होती। वह जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण पाती हैं। शोध से पता चलता है कि अवसाद आनुवंशिक, जैविक, पर्यावरणीय और मनोवैज्ञानिक कारकों के संयोजन से होता है। खासकर महिलाओं में यह विचार आम है, क्योंकि उनके जैविक, हार्मोनल और सामाजिक अनुभव पुरुषों से अलग है। तो बहनों, इस विषय पर आगे पुनः हम बात करेंगे। आइए फिर से लेते हैं फिल्म संगीत का आनंद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोता बहनों, हम आशा करते हैं कि ये गीत आपको अच्छा लगा होगा। आइए पुनः हम कुछ चर्चा संबंधी विषय पर बातें कर लें। बहनों, मानसिक स्वास्थ्य खराब रहने के कारण महिलाएं चिंतित, उदास, दोषी, बेकार महसूस कर

या उन्मादी महसूस करना जैसे लक्षण से युक्त रहती हैं। अगर इस विषय पर खुलकर बात की जाए और समुचित उपाय की जाए तो महिलाएं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकती हैं, जैसे नींद में सुधार लाना और तनाव कम करने तथा थकान दूर करने के लिए अपनी इंद्रियों पर अधिक ध्यान देना, यानी जीवन के आनंद लेने के लिए समय निकालना, योग, ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी गतिविधियां में संलग्न रहना आदि आवश्यक है महिलाओं के लिए। साथ ही जीवन में आनंद लेने के लिए आप संगीत का भी प्रयोग करते हैं, तो आइए क्यों ना पुनः हम संगीत का आनंद लें। सुनते हैं ये प्यारा सा फिल्म संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: कार्यक्रम में चलते चलते पुनः हम सोच रहे हैं कि आपको एक प्यारा सा फिल्म संगीत ही सुनवाएं, तो आइए सुनते हैं।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। अब समय हो चला है हिंदी समाचार का, जिसका प्रसारण हम दिल्ली से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल

पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो के घड़ी में दिन के 1:05 हो रहे हैं। अब आप जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से देशभक्ति गीत। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 1:15 पर। दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रोजगार सूचना।

संध्या काल 5 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से युवा को संबोधित कार्यक्रम युवावाणी। युवाणी केंद्र का श्रोता सुनेंगे तरुण कुसुम। फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 5:40 पर। विद्यापति गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:10 पर।

संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम गांव घर। गांव घर के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे घर आंगन, साथ ही सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। खेती गृहस्थी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7:00। संध्या काल में आप आनंद ले सकेंगे फिल्मी गीतों का 7:52 पर। मैथिली साहित्य के कार्यक्रम सिंगर हार हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। लोक गीतों का आनंद लेंगे रात्रि काल में 10:00 लोक माधुरी में, साथ ही फिल्मी गीतों का आनंद लेंगे 10:30 पर गीतों के रंग के अंतर्गत। सभा की समाप्ति 11:10 पर की जाएगी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है।

श्रोताओ, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रस्तुत होने वाले आज के आगामी कार्यक्रमों के बारे में। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

मोहम्मद रफी और उनके साथियों को अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत पे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब हम आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों के सफर पर। सफर का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हरी दर्शन से। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उनके साथियों की आवाज में यह गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे हैं हमारे कैंसर फिल्मी गीतों का। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है हजरत अमीर खुशरो ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया है। फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की।

रवि के संगीत निर्देशन में गए इस गीत को भी आप सुने थे फिल्म नील कमल से। आवाज थी मोहम्मद रफी की, गीत लिखा था शाहिर लुधियानवी ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी ने किया, गीत हैं अनजान के।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: संदेश पूर्वक सुने थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अभिमान का गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशन SD बर्मन ने किया था। श्रोता अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में फिल्म वारिस से। संगीत दिया है उत्तम जगदीश ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

इसमें भी आप सुन रहे थे फिल्म अगर तुम न होते का यह गीत। गीतकार गुलशन बाबरा, संगीतकार आर डी बर्मन थे। श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जंजीर से। गीत लिखा है गुलशन बाबरा ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गायक कलाकार मन्ना डे।

श्रोताओं, मन्ना डे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे यह गीत। इसी के साथ फिल्मी गीतों का सिलसिला समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप कुछ ही क्षणों में सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखें, जल्द TRE4 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विधि सम्मत होगी। पटना में TRE4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी तत्वों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन न करें। इससे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। जानकारी के अनुसार शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में भेजा जाएगा। सुश्री सिंह ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बैठक होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर आज बुलाई हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने हड़ताल का समर्थन किया है। ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ प्रदेश में भी अधिकांश स्थानों पर दवा दुकानें आज बंद रखी गई हैं। हालांकि इस दौरान सभी प्रमुख फार्मेसी श्रृंखलाएं, अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना के तहत इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह आयोजन 25 मई तक चलेगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आज आंधी पानी और वज्रपात की आशंका जताई है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एसएसबी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें 227 जवानों ने दीक्षांत प्राप्त किया। इस अवसर पर आईजी ट्रेनिंग अनुसुईया रण सिंह साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। अररिया जिले के जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास जिले के डेहरी अनुमंडल अंतर्गत मकराइन, डालमिया नगर और अकोढ़ी गोला क्षेत्र से पुलिस ने अवैध बालू खनन से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम नीलेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

अब आप सुनेंगे रोजगार सूचना। असिस्टेंट लोको पायलट ALPCEN 01-2026। जी हाँ, इस पद के लिए कुल पद 11127 आवेदन किए गए हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 15 मई 2026 है। अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। योग्यता उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI, NCVT या SCVT पास होनी चाहिए। फॉर जोन वाइज एलिजिबिलिटी चेक द ऑफिस नोटिफिकेशंस ऑफिशियल वेबसाइट फॉर RRB। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रेलवे टेक्नीशियंस भर्ती के कुल पद 6,565 खाली हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 30 जून 2026, अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। योग्यता टेक्नीशियंस ग्रेड 1 के लिए BSc, BTech डिप्लोमा और ग्रेड 3 के लिए 10वीं IIT पास होनी चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी।

बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, इसके लिए कुल पद 1186 खाली हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 7 मई 2026, अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप बिहार लोक सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब समय हो चला है दोपहर समाचार का, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और

0: कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर

0: एक बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी

को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:30 हो रहे हैं। पुनः पान लेंगे हमारे केंद्र से फिल्मी गीतों का। गीतों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं फिल्म तीसरी मंजिल से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म सरहद पार से। गीत लिखा है देव कोहली ने और इस गीत को अपने धुनों से सवारा है आनंद राज आनंद ने।

जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को भी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर इंडिया से। आवाज थी शब्बीर अहमद और अनुराधा पौडवाल की। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।

0: कुलवंत जानी के लिखे इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म इज्जत की रोटी से। गायक कलाकार थी अनुराधा पौडवाल। संगीत निर्देशन आदेश श्रीवास्तव के थे। श्रोताओं अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इस गीत को अपने सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा

अच्छा तो हम चलते हैं। इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं मंजूर खान।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत मंजूर खां के स्वर में। अभी हमारे इस रोड़ों की घड़ी में दिन के 3:20 हो रहे हैं। यह सभा यहीं समाप्त होती है। पुनः हम उपस्थित होंगे अपने आगामी कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

0: तो आरती
1: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
0: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल।
0: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
1: अरे बहुत
0: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
1: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
1: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे।
0: हाँ,
1: और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी

0: का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में दो से पांच रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक,
0: इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
1: मुश्किल है।
0: तो इसमें एक या दो ताने और दो से पांच बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं, और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या दो रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
0: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ, बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं या विवाह समारोह के अवसर हैं या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शुरू करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है, लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको, मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना, देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्य प्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े
0: हैं। बहुत गहरी बात है आरती, है अगर हम इसे समझ पाए तो कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
1: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते, समझ में आता है ना अच्छी तरीके से, जिस भाषा को जानते हैं।
0: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना। हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
1: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या

0: भाषा सीखते हैं, हाँ। उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ। तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
1: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुँचाने का काम करती है।
0: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
1: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे,
0: हाँ।
1: ये कभी मत मन में लेकर आइए।
0: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
1: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी
0: है।
1: क्या
0: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना
1: जी,
0: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
1: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप खुद ही अपने आप को आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
0: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती है,
1: सबका नजरिया
0: मायने रखता है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वारा द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल। वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां ब्रिज भाषा में,
0: कितना अच्छा लगा होगा,
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं,
0: तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल।
0: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शौक रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अपने मन से सीखिए,
0: हाँ।
1: आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नए नए चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी। जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा
0: हम लेते चौंक हैं। जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है,
1: बढ़ जाता
0: देखने
1: है।
0: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो

0: और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

फट के घटा लाई क्या छुपा के, घटा लाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: तो बतला।
1: हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया है ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
1: वो
2: कुछ
1: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
2: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है लेकिन वो क्यों काट रही है
1: जी,
2: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
1: बिल्कुल,
2: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
1: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो उछल के
2: उछल कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
1: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया
1: बिल्कुल
2: ऐसी ततैया भी बहुत बुरा काटता है, ये रंग का होता है वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
1: बिल्कुल
2: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है
1: जी। और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी

0: लिखनी और पढ़नी आती है
1: हाँ।
0: और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश हिंदी सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी लिखनी और बोलनी आती है और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
0: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती मराठी हिंदी इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी हम कहना श्रोताओं के जो विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती मराठी हिंदी इंग्लिश पंजाबी सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी।
1: बिल्कुल। और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
0: भाषा भाषा है,
1: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
1: चलिए, आपको भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
0: भाषा कभी बुरी नहीं,
1: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
0: जी,
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसा कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है, और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल। और आप हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भूनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़, घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें, एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में इसे छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं, एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें, जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है मुझे, तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है, मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे
1: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिली जाएगी,
0: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
1: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
0: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद, 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था, और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की, और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
2: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
3: जी
2: अल्मोड़ा हुआ।
3: अरे गजब, पहाड़ों पर।
2: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं, मतलब

0: मुझे अलबर्डा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त, तब तक
1: अच्छा
0: शुरू नहीं हुआ था। तो जो
1: जी
0: शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदी था, और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से
1: जी
0: था,
1: जी जी
0: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी मतलब,
1: हाँ
0: और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब। तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था
1: जी
0: वो एक अलग अनुभव था। तो
1: जी
0: एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है, और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
1: हाँ
0: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
1: हाँ
0: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब
1: बहुत
0: घूमने जाओ
1: मुश्किल
0: तो अलग बात है,
1: जी
0: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो, कभी
1: हाँ
0: रहा ना हो,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा, और मैं एक डेढ़ एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया
1: अच्छा
0: 86 में।
1: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत
0: हाँ
1: जी का
0: हाँ
1: इलाका था,
0: हाँ
1: तो वो तमाम चीजें
0: और
1: वो
0: वो भी
1: सब
0: सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अग्गे जी वहां पे
1: हाँ
0: रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: यस
0: ये सब भी,
1: उदय शंकर जी का
0: उदय
1: था
0: शंकर, सॉरी उदय
1: जी
0: शंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब, कि
1: जी
0: ये सब कुछ। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे रह
1: रहते
0: गए।
1: कैसे
0: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं, कि
1: जी
0: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है, पहाड़ों में कैसे।
1: बिल्कुल।
0: तो ये था।
1: मुंबई 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का
0: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये सपनों की नगरी थी,
1: जी?
0: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे, तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक
1: जी
0: अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटॉपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है
1: हाँ
0: उस
1: हाँ
0: पर, वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम,
1: बिल्कुल।
0: है
1: और तब तो
0: ना।
1: लंबी लाइनें
0: हाँ,
1: हुआ
0: वो
1: करती
0: लंबी
1: थी
0: लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटॉपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटॉपिल से किंग सर्कल आना वहाँ से पैदल,
1: जी
0: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
1: हाँ
0: में।
1: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
0: हाँ,
1: ढाल लेता
0: तो फिर
1: है
0: वो लोग अपने आप आपको उतार
1: जी
0: देते
1: जी
0: हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
1: जी
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार
0: तो ये
1: देंगे
0: उतार, तो
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहां जो जिंदगी बदली, वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
1: चरम
0: पर
1: पर
0: थी,
1: थी
0: चरम
1: जी
0: पर थी। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
1: जी
0: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त ये
1: बजाया करते थे
0: बजाया
1: उसको
0: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो, और
1: बिल्कुल
0: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा। अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार है,
1: बल्कि
0: बहुत
1: हमने उनको
0: प्यार।
1: बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं,
0: जी,
1: तब
0: सही
1: मैं था
0: सही।
1: नहीं शहर में
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में, युवाणी में जब अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
1: जी
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जी खुशी

0: थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या
0: हाँ
1: बात
0: ना,
1: है,
0: तो
1: क्या
0: वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई, तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
1: पेडरोड
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
1: जी
0: मैं गया। और उस समय का वक्त था, तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
1: जी
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह, उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
1: जी
0: रोज रियाज करना उनका काम था। जब बॉम्बे में होते थे
1: जी
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ है, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
1: जी
0: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
1: जी
0: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी, तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूं। वरना
1: वाह वाह
0: अक्सर होता है
1: वाह
0: कि रख के जाओ, देखता हूं, मैं करता हूं, सोचता हूं, बताता हूं,
1: जी जी
0: है ना,
1: जी जी
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूं।
1: वो कौन सी गजल थी? घर से निकले थे, ये
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब
1: जो
0: है,
1: जिंदगी की किताब है। वाह वाह वाह
0: तो ये वो
1: वाह।
0: पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब, ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे एक हल्की फुल्की गजल चाहिए। हाँ,
1: अच्छा,
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
1: जी
0: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती तो वो
1: ओ
0: गजल, लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और
1: जी जी
0: चलिए।
1: जी ये जो जिंदगी की किताब है, ये भी आपकी पहचान के साथ
0: हाँ,
1: पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
1: जी
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है, तो
1: वही
0: उसको
1: आप
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ एक।
1: जरूर जरूर।

कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब।

0: क्या बात है। और जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात थी,
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल
0: और ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका।

0: यहाँ से कमेंट्स है उस गजल पे, तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
0: जी
1: रिंगटोन में भी ये गजल
0: जी
1: बजती
0: जी
1: है। जगजीत जी ने गालिया, भूपी जी ने गालिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गालिया था
0: पंकज जी, उसके बाद
1: जी।
0: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की, सभी
1: नबील
0: ने,
1: था,
0: हाँ
1: नबील था
0: नबील नबील,
1: जी।
0: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं, तो
1: जी
0: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही,
1: आरोही
0: हाँ। तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
1: जी।
0: अच्छा उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
1: अरे
0: नीचे
1: बाप रे,
0: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
1: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
0: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
1: अच्छा है, ओके।
0: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
1: आरोही
0: दोनों
1: में
0: का
1: गाया।
0: रहा, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
1: आपके अपने दोस्त ने
0: हाँ,
1: ये बात
0: ये मेरे
1: कही
0: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
1: जी
0: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
1: जी जी
0: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
1: ओहो
0: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
1: जी।
0: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ, तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
1: हाँ,
0: सीरियल है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल,
0: और
1: बड़ा नाम है अजय
0: हाँ।
1: कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था।
1: जी
0: अच्छा दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
1: जी
0: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहां, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
1: हाँ बिल्कुल
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया है, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया, हाँ ये सुर का इधर उधर, नहीं फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर, उन्होंने 3 बार ये सुना। और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मजरू साहब, उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी।
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरू
1: मजरू जैसे
0: सुल्तानपुरी साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद था,
1: शायर की बात
0: है
1: है
0: ना।
1: ये,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है। पंकज जी की आवाज में ये गजल
0: जी
1: सुनते हैं
0: जी
1: हम।
0: जी

0: जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे
1: बिल्कुल
0: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है।
1: जी
0: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
1: बिल्कुल बहुत ही मशहूर
0: मशहूर
1: जी।
0: आज तो वो दौर नहीं है
1: जी,
0: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
1: जी,
0: मजरू सुल्तानपुरी,
1: कैफी आजमी,
0: कैफी आजमी, मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
1: जी,
0: बशीर
1: जी,
0: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
1: जी,
0: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
1: बाप रे,
0: अजीत एक्टर
1: जी,
0: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर
1: अलग ही होता था,
0: अलग ही हुआ करता था
1: जी,
0: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए,
1: अरे बाप,
0: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
1: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
0: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुला कि मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग
1: जी,
0: है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
1: हाँ हाँ,
0: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा या प्यार हुआ ना तो मुशायरा तो हो गया।
1: अरे अब तो शुरुआत कर रहे थे जब,
0: हाँ,
1: जी,
0: मुशायरा तो हो गया।
1: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
0: तो ये बड़ी बात थी
1: जी।
0: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
1: जी,
0: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
1: गजब,
0: अपने घर पर
1: जी,
0: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
1: जी,
0: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
1: हाँ हाँ,
0: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
1: हाँ,
0: आखिरी एल्बम था ये,
1: ओहो हो,
0: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में,
1: जी, जी,
0: वो चले गए
1: जी।
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
1: जी।
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे,
1: बिल्कुल।
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
1: जी जी जी।
0: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके मैं चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन खोला
0: ऑडियंस के सामने, ये सब हो गया और तालियां वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा
1: जी।
0: तो बोले नहीं राजेश रुके, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज,
1: हाँ,
0: है पूरा
1: और पूरा, हाँ,
0: पूरा हॉल है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, गा रहे हैं वो, बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, स्टैंडिंग माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब उनको पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़ी जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी
1: जी।
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: जी, जी
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार,

0: तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं।
1: अद्भुत अद्भुत
0: अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ तो वो मुझे क्यों नहीं ले गए आप,
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: ले गए,
0: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ
1: जो

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल्ट का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे, उजाले उनकी यादों के, मंथन जैसे कार्यक्रम थे, मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था, और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा, तो सबसे पहले यूनुस,
0: राकेश जोशी,
1: उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह से
0: सब चीजों को संभालते
1: थे, तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
0: जी,
1: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
0: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते
1: थे, ऐसा कम होता है
0: जी।
1: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है, खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए
0: जी,
1: आनंद जी आए
0: बिल्कुल,
1: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे,
0: बिल्कुल
1: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
0: रवि जी आए,
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: खयाम साहब
0: आए, और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है,
1: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज
0: मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं, और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं, और वही एक घंटे बात हो रही है
1: उनको, वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
0: जी,
1: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का
0: बिल्कुल,
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे, कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके

0: दे सकते हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग
1: जी
0: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
1: बिल्कुल,
0: में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
1: किसी
0: है,
1: के पास नहीं
0: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है,
1: जी।
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी,
0: ना। आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम जो
1: बढ़ के
0: है
1: एक हैं
0: वो हुए। प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है
0: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ, और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती

0: अब गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं, है
1: जी
0: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम जो
1: बढ़ के
0: है
1: एक हैं।
0: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है।
0: प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
1: जी
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
1: जी
0: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
1: बिल्कुल
0: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
1: जी
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को। तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे, एमए
0: जी
1: हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग। पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान पे, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उनका ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहाँ तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे को निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
0: हाँ
1: कि हम मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: वो फ्री
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहाँ से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
0: हाँ
1: तो मुझे यहाँ से ले जाओ,
0: अरे बाप रे
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं, अब तो
0: हाँ।
1: मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके, और
0: गजब
1: हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे।

0: तो फिर कहा हाँ ये बैठिए चाय वाय पी सब कुछ हुआ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, इसको करेंगे उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा है,
0: ये नहीं होने देंगे,
1: हाँ,
0: मैं भी चलूंगी।
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया,
1: जी जी जी,
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: हाँ, तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ,
0: सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में
1: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं दो तीन शेर सुनाता हूँ।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर।

1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं और हम उपस्थित हैं आपकी सेवा में संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी।

युवा साथियों नमस्कार, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और आज हम लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा लोकगीत आपकी सेवा में। साथ ही आज हम चर्चा भी करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज के युवाओं के सपनों, मेहनत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जुड़ा है, यानी कि स्टार्टअप और स्वरोजगार। चर्चा हम जारी रखेंगे लेकिन आपका मनोरंजन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले इस लोक भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अरविंद कुमार झा और ओम प्रकाश सिंह की आवाजों में सुनते हैं।

स्टार्टअप और स्वरोजगार, जी हाँ, यही आज का टॉपिक है हमारे चर्चा का। और हमने आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता भी दिया था कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है स्टार्टअप और स्वरोजगार। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज का युवा, आप युवा जो हैं, केवल नौकरी खोजने वाले नहीं रह गए, ऐसा देखा जाता है सोसाइटी में जगह जगह, बल्कि आप रोजगार देने वाला बनना चाहते हैं। हर युवा का सपना होता है। नई सोच, तकनीक और आत्मविश्वास के बल पर देश के लाखों युवा अपने छोटे छोटे विचारों को बड़े स्टार्टअप में बदल रहे हैं। वहीं रोजगार के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आज हम जानेंगे इस चर्चा के माध्यम से कि छोटा विचार कैसे बड़ी सफलता की कहानी बनती है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं युवाओं का साथ दे रही है, और किस प्रकार कौशल, नवाचार और मेहनत से युवा खुद तो आत्मनिर्भर बन ही रहे हैं, साथ ही 10 को लेके भी चल रहे हैं, 10 के रोजगार में भी सहायक बन रहे हैं। तो हम जानेंगे, लेकिन आइए एक चौमासा आपको सुनाते हैं केदारनाथ कुंवर और नंद शंकर की आवाजों में।

दोस्तों, आज के दौर में स्टार्टअप और स्वरोजगार केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि युवाओं की नई पहचान बन चुके हैं। पहले जहां अधिकतर युवा सरकारी या निजी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे और उसके लिए

दिन रात एक किए रहते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में युवा अपने विचारों और हुनर के दम पे खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। आपके अगल बगल में ढेरों उदाहरण ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां युवा लोग नौकरी के चक्कर को छोड़ के अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं और साथ ही साथ दो चार अपने ही जैसे बेरोजगार नवयुवकों को उसमें शामिल भी कर चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम जानते हैं कि स्टार्टअप का अर्थ क्या होता है। तो यह है किसी नए विचार, तकनीक या सेवा के आधार पर शुरू किया गया नया व्यवसाय। आज डिजिटल तकनीक ने युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। ऑनलाइन शिक्षा, फूड डिलीवरी, खेती से जुड़े आधुनिक उपकरण, मोबाइल ऐप, हस्तशिल्प, डिजिटल मार्केटिंग और घरेलू उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में युवा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आज एक फोन रिंग पे आपके घर में खाना आ जाता है, वो भी इतना गर्म कि आपके अपने चूल्हे से भी आपके प्लेट तक नहीं आ सकता। तो ये सब कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी स्टार्टअप का ही देन था। एक नया आइडिया किसी युवा के दिमाग में आया और उसको इतना बड़ा एक रूप दे दिया गया, ऑनलाइन मार्केटिंग का, किसी भी चीज़ के डिलीवरी का, चाहे वो फूड डिलीवरी हो, कॉस्मेटिक्स डिलीवरी हो, क्लोदिंग हो, शूज़ हो, मतलब हमारे आपके आवश्यकता की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है आज के युग में जो आप ऑनलाइन नहीं मंगा सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो ये है चमत्कार स्टार्टअप का, यह है चमत्कार स्वरोजगार का। आइए सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत अरविंद कुमार झा की आवाज में।

स्वरोजगार की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये है कि इसमें व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। वह केवल अपने आप को ही आत्मनिर्भर नहीं बनाता, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग और ऑनलाइन सेवाओं जैसे कार्य युवाओं को आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत बना रहे हैं। आज के डेट में आप देखते होंगे अपने अगल बगल, सरकार भी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, कौशल विकास। कौशल विकास तो एक ऐसी योजना है सरकार की जहां आप तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा हासिल कर सकते हैं। बहुत अनेक कार्यक्रम जैसे प्रयास युवाओं को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसमें युवा अपने सपनों को नई उड़ान भर रहे हैं, भर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा अपनी प्रतिभा को पहचाने, नए विचारों को अपनाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आत्मनिर्भर युवा ही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और वो ताकत देगी आपको आपके नए विचार, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे स्टार्टअप्स में, स्वरोजगार में, और अपनी भी समृद्धि, साथ साथ समाज और देश की भी समृद्धि को बढ़ाएंगे। आइए सुनते हैं एक और बढ़िया गीत, शारदा सिन्हा, विदुषी शारदा सिन्हा की आवाज़ में।

युवाणी, ये था युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको इंतजार होगा कुछ नए फिल्मों के नए नगमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले फिल्म डेढ़ बीघा जमीन का ये गीत। इस गीत को गाया है अनुराग सेकिया, राघव चैतन्य और रितिशा शर्मा ने। रश्मि विराग की रचना है और अनुराग सेकिया का संगीत।

सुनिधि चौहान एवं नकाश अजीज को भी आप सुन रहे थे फिल्म छत्रपति में। मायापुरी के बोल थे और तानिश्क बागची का संगीत। अगला गाना हमने लिया है फिल्म भोला से। इस गीत को गाया है बी प्राक ने, इरशाद कामिल के बोल हैं और रवि वसरूर का संगीत। तो सुनते हैं फिल्म भोला का ये गीत।

0: वत्सला एवं राजू पात्रा के गाए फिल्म पुष्पा 2 के इस गीत के साथ ही नई फिल्मों के गानों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच

0: करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। स्थानीय सूचनाओं के अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं आज के शेष और कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में।

महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे अब से कुछ देर बाद, अर्थात शाम 6:10 से। मैथिली संवाद शाम 6:25 पर हमारे श्रोता सुनते हैं। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर हम आप तक पहुंचाते हैं प्रतिदिन संध्या 6:30 पर एवं किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी शाम 7 बजे से।

फिल्म संगीत शाम 7:52 से। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का आनंद हमारे श्रोता उठा सकते हैं रात 8:15 से। समाचार संध्या रात 8:45 पर, न्यूज एट 9 9 बजे से, एवं उर्दू में खबरें रात्रि के 9:15 से आप सुनते हैं। कार्यक्रम चर्चा का विषय है रात 9:30 से, और इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। लोक गीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी रात 10 बजे से, और फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा एक और साप्ताहिक कार्यक्रम गीतों के रंग रात 10:30 से प्रसारित होंगे।

और अब कल प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। वंदे मातरम के साथ ही आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा सुबह सवेरे 5:45 पर। कृषि चर्चा प्रातः 5:55 पर। स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हमारे श्रोता प्राप्त कर सकते हैं प्रातः 6:05 पर स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। हमारे केंद्र की भक्तिमय प्रस्तुति वंदना प्रातः 6:10 से। रामचरित मानस गान का रसपान हमारे श्रोता कर सकते हैं प्रातः 6:40 से। और कार्यक्रम नमस्कार मिथिला का आनंद हमारे श्रोता उठा सकते हैं कल प्रातः 7:05 से।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे इस सभा के शेष और कल प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। स्थानीय सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे महाकवि विद्यापति की कुछ रचनाएं। आज के कलाकार थे रामकुमार मलिक एवं गौतम मिश्र। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

नमस्कार। आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरीक अध्यक्षता मे राज्य मंत्रिमंडलक बैसार पटना स्थित मंत्रिमंडल सचिवालय मे सम्पन्न भेल। बैसार मे विभिन्न विभागक 13 प्रस्ताव के सरकार अपन स्वीकृति प्रदान कयलक अछि। एहि मे औरंगाबाद, अरवल आ सहरसा मे खेल संरचनाक विकास तथा स्टेडियम निर्माणक प्रस्ताव के मंजूरी सेहो देल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आइ पटना मे हवाई अड्डाक रनवे के विस्तार के लऽ कऽ काज करबाक लेल नागर विमानन विभाग आ सिविल विमानन विभागक अधिकारी लोकनि संग चर्चा

0: कयलनि। मुख्यमंत्री कहलनि जे रनवे के विस्तार के लऽ कऽ राज्य सरकार पूरा सहयोग करत। ओम्हर जनता दल यूनाइटेडक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आइ नव दिल्ली मे केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सँ भेंट कऽ दरभंगा हवाई अड्डाक विकास सँ जुड़ल मामला पर चर्चा कयलनि। चर्चा मे श्री झा दरभंगा हवाई अड्डा सँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करबाक संग आनो विकास काजक अनुरोध कयलनि। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहलनि अछि जे TRE 4 लेल अधिसूचना शीघ्रहि जारी कयल जायत। पटना मे संवाददाता लोकनि सँ गपशप मे श्री तिवारी कहलनि जे शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा राखथि, जल्दीए TRE 4 परीक्षाक शेड्यूल जारी कयल जायत। ओ कहलनि जे शिक्षक भर्तीक प्रक्रिया विधि सम्मत होयत। पटना मे TRE 4 अभ्यर्थी सभक प्रदर्शन के लऽ कऽ शिक्षा मंत्री कहलनि जे बाहरी तत्वक उकसावा मे अभ्यर्थी लोकनि अनावश्यक विरोध प्रदर्शन नहि करथि। एहि सँ पूर्व शिक्षक अभ्यर्थी लोकनि आइ पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवनक सोझा प्रदर्शन कयलनि। एहि क्रम मे प्रदर्शनकारी लोकनि सँ पुलिसक झड़प सेहो भेल। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह कहलनि अछि जे राज्यक प्रतिभावान खिलाड़ी के उत्तम प्रशिक्षण देल जयबाक लेल देशक प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान आ अकादमी मे पठाओल जायत। सुश्री सिंह पटना मे आयोजित विभागीय समीक्षा बैसार मे अधिकारी लोकनि के एहि संबंध मे आवश्यक डेग उठेबाक निर्देश देलनि। प्रदेश मे 29 नव रेल लाइनक निर्माण कराओल जायत। एहि मे कतेको रेल लाइन मिथिलांचल मे ओहिठाम स्थापित कयल जायत जतय लोक मात्र सड़क मार्ग पर निर्भर छथि। नव रेल लाइनक अलाइनमेंट तय करबाक मंजूरी रेलवे बोर्ड प्रदान कऽ देलक अछि। एहि पर कुल 267 लाख टाका खर्च होयत। मिथिलांचल मे मधुबनी सँ जनकपुर रोड, कुशेश्वर स्थान सँ सहरसा, भगवानपुर सँ महुआ ताजपुर होइत समस्तीपुर धरि, मधुबनी आ कमतौलक मध्य, बहेरी सँ शिवाजी नगर रोसड़ाक मध्य, लोहना सँ मुक्तापुरक मध्य सेहो नव रेल लाइनक निर्माण कराओल जायत। प्रदेशक अधिकांश भाग मे भीषण गर्मीक स्थिति बनल अछि। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत प्रदेशक दक्षिण पश्चिम भाग मे अधिकांश ठाम पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार कऽ गेल अछि। मौसम विभाग अगिला 24 घंटा मे भभुआ, गोपालगंज आ रोहतास जिला मे लू चलबा के लऽ कऽ रेड अलर्ट जारी कयने अछि। विभाग सँ प्राप्त संवादक अनुसार पछिला 24 घंटा मे 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमानक संग कैमूर जिलाक भभुआ प्रदेशक सभ सँ गर्म स्थान रहल। एम्हर विभाग सुपौल, अररिया, किशनगंज आ पूर्णिया समेत प्रदेशक उत्तर पूर्व भाग मे कतेको ठाम अन्हर आ बरखाक संग ठनका खसबाक आशंका व्यक्त कयने अछि। विशेष निगरानी इकाईक टीम सहरसा जिलाक महिषी अंचल कार्यालयक अंतर्गत बेलाही सिरवार हल्काक राजस्व कर्मचारी श्याम प्रसाद सिंह के 16,000 टाका घूस लैत ठामहि गिरफ्तार कऽ लेलक। टीम एहि मामिला मे एक दलाल फूलचंद शाह के सेहो गिरफ्तार कयलक अछि। हिनका दुनू पर जमीनक रसीद काटबाक लेल घूस लेबाक आरोप अछि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12 कक्षाक बोर्ड परीक्षा 2026 मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका के स्कैन कयल गेल प्रति के लेल आवेदन करबाक अंतिम तिथि एक दिन आओर बढ़ा देलक अछि। उम्मीदवार आब 23 मई धरि आवेदन कऽ सकता। मधुबनी जिलाक मंगरौनी मे दू पक्षक बीच भेल हिंसक घटना मे लदनिया थाना क्षेत्रक खजेडीह गाम निवासी एक युवकक मृत्यु भऽ गेलनि। घटनाक बाद पुलिस मामिलाक जांच कऽ रहल अछि। पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार जनौलनि जे जल्दीए आरोपी के गिरफ्तार कऽ लेल जायत। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर। आज बुधवार है और बुधवार को हम आपको सुनवाते हैं गांव घर के अंतर्गत घर आंगन।

0: घर आंगन में सब श्रोता लोकन की आ बहन सबके मुनि दिस से स्नेहपूर्वक नमस्कार संगे स्वागत है। आ लाल बहन अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार मुनि बहन आ संगे सब श्रोता बहन के हमरो दिस से नमस्कार। मुनि बहन आय बुध दिन है आ बुध दिन अपना सब पर आधी आबादी बहन लोकन के कार्यक्रम घर आंगन लऽ कऽ अबै छी।
0: एकदम एकदम अपन जे आधी आबादी छथिन अपन बहिन सब जे छथिन से सब घर आंगन में सदिखन तत्पर रहै छथिन, सम्हारित रहै छथिन, सजाबैत छथि, अपन परिवार के सवारित छथि। लाल बहिन देखब जे अपन बहिन सब आब जे घर आंगन में बैसैत छथिन तऽ ओ सब आपस में दू टप्पी करती जे केना कऽ अपना सब आत्मनिर्भर बनी, केना कऽ कोन माध्यम सँ हम अपन परिवार के सहयोग करी।
1: मुनि बहिन अहाँ बहुत निक गप कहलहुँ। पहिने ई छल जे घर आँगन तऽ हमर बहिन सम्हारिते छली आ एखनो सम्हारै छथि, दुनू काज करै छथि, मुदा पहिने ई छलै जे घर आँगन सम्हारलहुँ इहो बहुत पैघ काज अछि। लेकिन आब तऽ हमर बहिन लोकनि घर आँगन सम्हारि कऽ बाहरो के काज मे तत्पर ओहिना रहै छथि। ओतबे नहि, धियापुता जे बूढ़ बुजुर्ग जे छथि, सास ससुर होथि या दादा दादी होथि, जे घरमे होथि हुनको समय पर सब काज, तऽ कहबाक ई तात्पर्य हुनका हुनका कतेक जिम्मेवारी छनि आ सब केओ बखूबी खूब नीकसँ निमाहै छथि आ तहन हमर परिवार के केना सहयोग होइ दूटा पाइसँ दूटा टाकासँ हमहूँ आत्मनिर्भर बनी, अपन पैर पर ठाड़ होइ, एहि लेल सतत प्रयासरत रहै छथि।
0: एकदम एकदम देखब जे आब अपन बहिन सब, आब देखब लाल बहिन जे घर चलबै छथिन सुनियोजित ढंगसँ इहो एकटा बहुत पैघ कला होइत अछि जे घर नीकसँ चला लै छथि, घर नी दूटा पाई बचाबैत छथि, बचत कऽ कऽ इहो जे छै सहयोग भेल एकटा परिवारमे। आप देखब जे कि कोनो बहिन सब छथिन 8 घंटा के ड्यूटी कऽ कऽ नौकरी करै छथिन, वेतनसँ अपन परिवारमे जे सहयोग करै छथिन, योगदान दै छथिन वेतनसँ, हुनकर योगदान तऽ अछि छियै, ओ घरमे सेहो सहयोग करै छथिन। मुदा जे बहिन सब घरमे रहि कऽ घर सम्हारै छथिन, दूटा पाइके बचत करै छथिन तऽ हुनको योगदान अतुलनीय छै,
1: अतुलनीय, ओकर कोनो तुलना नहि। आ एतबे नहि, ओ देखियौ अहाँ ठीके कहलहुँ हँ, ओ कतेक अपना एक बहुत पैघ कला छै। अहाँके एहनो किछु लोक छथि जे बहुत रास देखियौ बहुत रास पैसासँ सेहो अहाँ नीक ढङ्गसँ घर चला नहि सकै छी आ कमो पाइमे कतेक बहिनके अहाँ देखबनि एतेक नीकसँ सुव्यवस्थित ढङ्गसँ ओ चला लेती आ ककरो आगू हाथ नहि पसारती आ हुनका ओतऽ जाउ तऽ कतेक स्वच्छता, कतेक नीक, कोनो चीजके अहाँके त्रुटि नहि बुझायत। ओ देखब तऽ अहाँके ई नहि लागत, अहाँ अपन आँगनमे जायब तऽ अहाँ अपनामे गप करब जे ओ बहिन कतेक कम आमदनीमे कतेक नीकसँ रहै छथिन, ओहन तऽ ओतेक बहिनके नहि। आ कतेक देखबनि जे अलेल अगर कमाइ छनि तऽ अलेल जेना ओ फेकबो करै छथि, तऽ बहादुरी प्रसन्नता तऽ मने छै, प्रसन्नताके पात्र तऽ ओ बहिन छथि जे कममे नीकसँ सुव्यवस्थित ढङ्गसँ घर चलबै छथि, बजट बना कऽ चलबै छथि,
0: सीखैके
1: कम खर्चमे।
0: हुनकर सबके प्रयास इएह रहैत अछि जे कि कनिक आत्मनिर्भर बनी हमहूँ सब, एहि दिस प्रयास हुनकर सबके लागल रहैत अछि। आब आत्मनिर्भर बनब, दूटा जँ शिक्षित छी तऽ दूटा धियापुता के पढ़ेबे करब,
1: अपने सब पढ़ा लै छथि नहि। आइ देखियौ कते बहिन छोट छोट बच्चाके से पढ़बै छथि टीचर लगा कऽ, तऽ जे बहिन अपने पढ़ल लिखल छथि ओ कम समय मने निकालि कऽ अपन बच्चाके अपने पढ़ा लै छथि तऽ ओहो तऽ बचते नहि भेलै।
0: एकदम अपन धियापुता के शिक्षा के संगे
1: बेसी
0: नैतिक शिक्षा सेहो विकास हुनका
1: मे पहिने तऽ छै जे बच्चा पहिने किछु बनै, ओहिसँ पहिने तऽ पहिने एकटा मनुख बनै, ताहिके बाद ने किछु बनत, डॉक्टर बनत कि इंजीनियर बनत कि टीचर बनत जे बनत, मुदा पहिने तऽ सबसँ पहिने एकटा इंसान नीक नीक इंसान बनै, तऽ ओहि लए तऽ माता पिताके सबसँ पहिने सजग रहऽ पड़ै छनि आ ओ नैतिकताके पाठ पहिने अपन अनुशासन अपन बच्चाके पढ़बै छथि। किया तऽ जे बच्चा अनुशासित होयत वएह जिंदगीमे आगू किछु कऽ सकैया, सबसँ पहिने तऽ वएह पाठ आवश्यक छै।
0: एकदम बहुत आवश्यक अछि, ताहि दुआरे अपना सब कहि सकै छी जे कि बहिन के एकटा स्त्री के सब रूप में हुनकर योगदान जे छै अपन परिवार में अतुलनीय छै।
1: आ कहले गेला एकटा जे स्त्री एकटा महिला जे शिक्षित होइ छै तऽ पूरा परिवार शिक्षित होइया, एहन कहले गेल अछि, ओ पूरा परिवार के शिक्षित करैया। नहि शिक्षा हमर बहिन लोकनि आब शिक्षित भऽ रहल छथि, कोनो एहन क्षेत्र नहि अछि जतऽ हमर बहिन की बेटी अपन पैर नहि पसारलनि हँ। तऽ एहि दुआरे नहि तऽ शिक्षामे जखने विकास होयत तऽ हमर गाँव के विकास होयत, हमर राज्य के विकास होयत, हमर देश के विकास होयत।
0: आब अपन बहिन सबके आत्मनिर्भर बनेबा के लेल सरकार कतेक प्रयास कर रहल।

0: योजना चलाओल जाय
1: एकदम एकदम से हमहू कहै छी त अपन बहिन सब के चाही जे कि एकदम सजग भ क ओ योजना के लाभ उठाबैत आ आत्मनिर्भर बन क और बेसी अपन परिवार के सहयोग
0: करैत बेसी से बेसी सहयोग करैत त देखो गप सप त बहुत रास से फेर करब मुदा पहिने की विचार किछु गीत नाद सुन ली
1: एकदम
0: फेर गप सप हेतै
1: सुनैत छी तऽ

0: तो राखी कुमारी के स्वर में अपना सब सुन लो लाल बहिन, ई गीत कतेक नीक लागल।
1: हाँ, सब बहिन के निक लागल हेतन। आ मोनी बहिन, एकटा गप आई याद अइ ने, आइ से विश्व मधुमक्खी दिवस सेहो अइ।
0: आइ 20 मई, आ 20 मई के अपना सब मनाबैत छी विश्व मधुमक्खी दिवस। आ विश्व मधुमक्खी दिवस जे अछि, ई एकटा वार्षिक कार्यक्रम अछि जे कि पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा आ जैव विविधताक लेल मधुमक्खी आ आन परागण के विषय में जागरूकता बढ़ेबा के लेल अपना सब एकर महत्व के लेल मनाबित छी। आ लाल बहिन, एलोवेनिया के आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानसा केर जन्मदिन के उपलक्ष्य में एहि दिवस के चुनल गेल अछि। आइ जे अपना सब मना रहल छी, मधुमक्खी कतेको पौध आ जंतु के अस्तित्वक लेल महत्वपूर्ण होइत अछि, किएक तऽ ई विश्वक लगभग 1/3 फसिल आ 90% वन्य पुष्पीय पौध के परागित करैत अछि।
1: ठीके अहाँ कहलहुँ मोनी बहिन, एतबे नहि, ई मध, मोम, प्रोपिलिस आ आन मूल्यवान उत्पादक के सेहो उत्पादन सेहो करैत अछि, जाहिसँ पोषणीय, औषधीय आ आर्थिक लाभ होइत अछि। एतबे नहि, सङ्गे मधुमक्खी पौध के तेजीसँ स्वस्थ रूपसँ बढ़यमे मदद करैत अछि, जाहिसँ ओकर कार्बन ग्रहण आ भंडारण क्षमता में वृद्धि होइत अछि। आ मधुमक्खी रासायनिक उर्वरक आ कीटनाशक के आवश्यकता के सेहो कम करैत अछि, तऽ एहिसँ बहुत लाभ भेल ने, एहिसँ बहुत लाभ। एहिसँ फसल जेना फल, सब्जी, तिलहन, दलहन इत्यादि में परागण के द्वारा एकर उत्पादक आ गुणवत्ता बढ़ेबा में सहायक होइत अछि। एतबे नहि मोनी बहिन, मध आ आनो उत्पाद उत्पादन सँ मोम, प्रोपोलिस आदि के उत्पादन कम कऽ कऽ ग्रामीण परिवारक लेल आय आ रोजगारक एकटा अवसर सृजित करैत अछि।
0: एकदम अपन बहिन सबके देखै छियै, कतेको बहिन सब एहिसँ स्वरोजगार कऽ कऽ आत्मनिर्भर बनि रहल छथि।
1: आ कम खर्च मे, कम लागत मे ई व्यवसाय छै, कम जगह मे
0: एकदम
1: से एहिसँ आय बढ़िआँ होइ छै, एहिसँ अपन परिवार को नीक सँ से आमदनी
0: एकटा स्रोत अछि एकटा अपन उद्यम के। तऽ लाल बहिन कार्यक्रम घर आंगन में अपना सबके समय के सेहो ध्यान रखबा के चाही। आ आइ जे प्रायोजित कार्यक्रम अछि पारा मेडिकल है पारस,
1: ओकर बेर भ गेलै, तऽ आब सुनै छी मालक ई कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से 7 दिनों के बाद आज बुधवार का दिन है और हम कार्यक्रम में पैरामेडिकल है पारस लेकर आप सबों के घर आंगन में आ चुके हैं बातें करने की। पैरामेडिकल का कोर्स, ANM, GNM का कोर्स, ये सारा कोर्स जो है ना आपके जीवन में एक नई गति ला सकता है यदि आपने तरीके से पढ़ाई की। पैरामेडिकल है पारस ये कार्यक्रम लेकर आते आते वर्षों निकल गया, लगातार ये कार्यक्रम जी हाँ चल रहा है और इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस लाइन के ठीक सामने। हाँ, यहाँ आप आकर मिल सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। कहते हैं ना साथियों कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अगर जो आपने टेक्निकल पढ़ाई की तो आपके लिए रास्ते, हाँ रास्ते बहुत तरीके से खुल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर में तो और भी संभावनाएं हैं, आप पढ़ते पढ़ते रोजगार पा सकते हैं, अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर निजी क्षेत्र में भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन संस्थान का चुनाव हाँ बहुत सावधानी से करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां से संस्थान एफिलिएट

0: लिमिटेड है, क्लासरूम स्टडी की क्या व्यवस्था है, प्रैक्टिकल की क्या व्यवस्था है, लाइब्रेरी किताबें बहुत महंगी होती हैं, किताबों के लिए क्या करना होगा, सब कुछ ठोक बजा के एकदम ठोक बजा के देखना होगा, फिर दाखिला लेना होगा और जोरदार पढ़ाई करनी होगी। बहरहाल चलिए आज हमारे साथ यहाँ कौन है आपको बताएं, और वो हैं श्री राज, नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इन्हीं से इनका परिचय, लेकिन उससे पहले हम नंबर बताना चाहेंगे जिस पर आप फोन करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर, दो नंबर बताएंगे, आप नोट कीजिए नंबर, और अगर आपके पास नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। पहला नंबर है 9162 41 32 33, और दूसरा नंबर है 9155558888, यानी 9 1 4 5 और 4 8। चलिए मुलाकात करते हैं वाइस प्रिंसिपल साहब से और जानते हैं इनके विषय में। पहले फिर सवाल।
1: सर, मेरा नाम केशव कुमार डागुरा है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल में लास्ट ईयर से वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर पोस्टेड हूँ, और मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूँगा, नर्सिंग में एक अच्छा करियर,
0: नर्सिंग में एक अच्छा करियर है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई केशव जी?
1: मैं सर जीवाजी यूनिवर्सिटी 2013 में पास आउट हूँ वहाँ से, और MSc नर्सिंग मेरा KS कॉलेज ऑफ नर्सिंग MPMSU से क्लियर किया हूँ।
0: बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन ये बताइए कि बिहार आके राजस्थान से कैसा लग रहा है?
1: बिहार आके काफी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे नर्सिंग में और पैरामेडिकल क्षेत्र में हम लोग कुछ बेटर करना चाहते हैं, कुछ बेस्ट करना चाहते हैं बच्चों को एजुकेशन के मामले में।
0: अच्छा एक बात बताइए, हाँ आप यहाँ बाहर से आए हैं, हमारे पूरे बिहार के बच्चे ये जानना चाहते हैं कि श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का माहौल कैसा है?
1: श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर एजुकेशनली माहौल एकदम, सारे वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, हाँ लैब्स हमारे यहाँ जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को, सबसे अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ है अभी, और सर भी बहुत अच्छे हैं, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, बच्चे को हर तरह से सपोर्ट मिलता है।
0: अच्छा अब चलते लौटते हैं BSc नर्सिंग कोर्स की तरफ, BSc नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी दीजिए बच्चों।
1: BSc नर्सिंग सर एक 4 ईयर का कोर्स होता है, इसके लिए इंटर में 12th में बायोलॉजी का होना जरूरी होता है। इसमें गवर्नमेंट भी सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारा वैकेंसीज होता है, आर्मी होता है, डिफेंस का जितना भी वैकेंसी होता है, एम्स होता है, ESIC हॉस्पिटल होता है, आजकल CHO 2020 से एक कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट पोस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका दिल्ली से संचालन होता है, बच्चा CHO भी पोस्टेड होता है, एक PSC होता है गाँव में सर जहाँ पे अंडर 5000 पॉपुलेशन होता है, वहाँ पर CHO को पोस्टेड किया जाता है।
0: आपने बड़ा बड़े अच्छे से बताया कि बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं BSc नर्सिंग की पढ़ाई करके, और 4 साल का कोर्स है आपने बताया, और जो इंटर में बायोलॉजी के साथ जिसने किया है वो यहाँ आ सकता है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन दो बातें हम अपने सुनने वालों से कर लें। कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, और इस वक्त हमारे साथ केशव कुमार डांगुर साहब बैठे हैं जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल हैं, और अभी बातचीत चल रही है BSc नर्सिंग, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, और कहां कहां आप प्लेस्ड हो सकते हैं, रोजगार मिल सकता है, यानी एंड ऑफ द डे रोजगार ही चाहिए आपको, है ना, तो वो भी जानकारी दी है। अगर आपको और भी विशेष जानकारी चाहिए तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी संस्थान के डायरेक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं, और उनका नंबर है 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो आज पहली बार सुन रहे हैं, उनको बता दें कि ये पटना के जक्कनपुर इलाके में है, जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अपना बिल्डिंग है, जहां क्लासेस चलते हैं, सारी गतिविधियां होती हैं। अपना श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल है जहां प्रैक्टिकल कराई जाती है। प्रैक्टिकल से ही एक सवाल हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है हेल्थ का, इसमें प्रैक्टिकल का कितना

0: बड़ा रोल होता है।
1: मेरा मानना यह है सर, प्रैक्टिकल का इसमें 100% रोल होता है। बच्चा अगर उसको हॉस्पिटल में जाके ऑन पेशेंट करेगा या ऑन डमी करेगा, उसके लिए हमारे यहाँ कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, लैब में डमी पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद पेशेंट के पास बच्चे को भेजा जाता है, जिससे टेक्निकली फेस टू फेस बच्चा पेशेंट को हैंडल करेगा, तो इससे ये चीज़ें सीखने को मिलती है सर।
0: कब से प्रैक्टिकल शुरू होता है? हम तो सुने हैं कि श्रीराज में जब बच्चे आते हैं तो एडमिशन हुआ और उनकी व्यवहारिक शिक्षा शुरू हो जाती है।
1: जी सर, ऐसा ही है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर 3 मंथ्स बच्चे को फर्स्ट एजुकेशन थ्योरी का स्टडी कराया जाता है। पीटीएस एग्जाम होता है, उस एग्जाम के जस्ट बाद उनका आवरली इसमें होता है सर। हाँ। हम लोग टोटल बच्चे को आवर के अकॉर्डिंग, ईयरली अकेडमिक अकॉर्डिंग भेजा जाता है बच्चे को हॉस्पिटल ड्यूटी में। अप्रोक्स 10 मंथ उसको कंटिन्यू हॉस्पिटल में ही रहना होता है, 6 आवर ड्यूटी।
0: अच्छा, आपका इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल का कैंपस तो एक ही में है?
1: यस सर।
0: तो बच्चों को इसका लाभ तो मिलता होगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को लाभ भी मिलता है, बच्चों को नाइट ड्यूटी भी, हम लोग जो भी सीखने का इच्छुक होता है हॉस्पिटल में उसको अलग से भी सर का सपोर्ट होता है, चेयरमैन सर का, टीचर्स लोगों का भी सपोर्ट होता है। सारी चीजें बच्चे को अच्छे से लर्न कराई जाती है प्रैक्टिकल के लिए सर।
0: अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है केशव जी, हम लोग भी जब स्टूडेंट रहे थे, आप भी रहे होंगे।
1: जी जी सर।
0: स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन जो बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जरूरी होता है,
0: फ्रेंडली। तो क्या टीचर एकदम खौफ के साथ रहते हैं या बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेवियर?
1: नहीं सर, टीचर्स जो होता है, कम्युनिकेशन गैप हमारे नर्सिंग में एक टॉपिक होता है सर, जिसमें बच्चे का बिहेवियर, उसके कम्प्लीट जो हैबिचुअल है, उन सारी चीजों को टीचर्स सर्विलेंस करते हैं, निगरानी में रखते हैं, अच्छे से देखते हैं। और जो गैप मेंटेन होना चाहिए टीचर्स स्टूडेंट के बीच में, वो होता है एजुकेशनली गैप और बिहेवियर को लेके। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट टीचर्स होगा, सभी बच्चे को अच्छे से हैंडल करते हैं, पोलाइटली हैंडल करते हैं।
0: यानी एकदम प्रैक्टिकल, एकदम बिहेवियर जो है फ्रेंड और टीचर का है, बावजूद
1: बिल्कुल सर,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: फ्रेंडली माहौल है।
1: बिल्कुल।
0: आपको क्या लगता है कि बच्चे जो आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जो ख्वाब लेके आते हैं, जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, तो अगर आपके यहाँ, आपके इंस्टीट्यूशन, कहने का मतलब श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़े, तो बच्चे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं?
1: बिल्कुल सर, मैं यही बोलना चाहूँगा, बच्चे अच्छा मेहनत करेंगे, बच्चे और गार्जियन का भी उसमें सपोर्ट होता है सर, और बच्चों को भी स्टडी करना होगा। ये 4 ईयर ही होता है बच्चे की एक एज के अकॉर्डिंग, जो स्टडी जो उसका फ्यूचर बना सकती है।
0: जी बिल्कुल।
1: उसके बाद मैं यही बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को, राज इंस्टीट्यूट में एक बार आइए और वहाँ पर देखिए स्टडी का, प्रैक्टिकल का। उसके बाद सभी बच्चों का उम्मीद यही है कि 99% उनका फ्यूचर बनेगा सर।
0: फ्यूचर बनेगा। हालांकि हम एक जानकारी और दे दें आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टर साहब को, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी को फोन किया कि हम लोग पटना नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने गुरौल में भी वैसे लोगों के लिए, एक समाज का विकास हो सके, बच्चे गांव के भी आगे बढ़ सके, इसके लिए इन्होंने गुरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो श्रीराज ग्रुप का ही है, उन्होंने गुरौल में स्थापित किया है। वहां भी आप इसी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 9162413233, और दूसरा 9155558888। वाइस प्रिंसिपल साहब केशव जी, एक सवाल जो हमारे आपके घर में भी होता रहा है, बच्चों को अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में कहें तो करियर चुनने की आजादी नहीं होती है, उनके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, बड़े भाई बहन का होता है, जो हम समझते हैं कुछ हद तक गलत है, सजेशन देना चाहिए। ऐसे में पूरा बिहार सुन रहा है, बात कीजिए कि ये गलत है या सही अपने हिसाब से।
1: मैं सभी गार्जियन से एक ही बात बोलना चाहूंगा, बच्चे पर बिलीव रखना है, बच्चे को अच्छा स्टडी के लिए लाइफ एक बार मिलता है किसी भी इंसान को, तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, उसके फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरा यही रिक्वेस्ट है।
0: और जो कोर्स वो चुनना चाहते हैं
1: जी,
0: उस पे लिबर्टी मिलनी चाहिए?
1: बिल्कुल मिलनी चाहिए सर, बच्चे की जो चॉइस है, बच्चा जिस चीज में जाना चाहता है उसको बिल्कुल गार्जियन को देना चाहिए और उसको आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए।
0: अच्छा, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे केशव जी, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है बहुत, हमसे ज्यादा बच्चों के साथ आप रह चुके हैं।
1: जी, जी सर।
0: बहुत सारे बच्चे इनडिसिसिव होते हैं, जिसमें वो डिसीजन नहीं ले पाते और प्लेन स्टडी को चुन लेते हैं, मसलन बीएससी कर रहे हैं तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या इस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर इसकी जगह वो टेक्निकल कोर्स को ऑप्ट करते तो शायद ज्यादा बेनिफिशियल होता
1: जी।
0: तो वैसे बच्चों के लिए संदेश की अगर आप कंफ्यूजन है आपके पास तो आप किसी बड़े से किसी एक्सपीरियंस आदमी से मदद ले सकते हैं। और इस वक्त रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो कोई है नहीं, तो बताइए उन लोगों को।
1: मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगा सर, जैसे

0: चाइना है, अमेरिका जिस डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर एजुकेशन का मेन रोल है सर उस चीज में, टेक्निकल एजुकेशन का। वहाँ पर बच्चे को ही सिखाया जाता है बाज कैसे बनता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सारी चीजें उनको स्टार्टिंग से लर्न कराई जाती है। तो मैं सभी बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि बीएससी नर्सिंग एक टेक्निकल कोर्स होता है, इसमें आकर वो आगे बढ़े और अपना फ्यूचर बनाए।
1: आगे बढ़ें और फ्यूचर बनाएं। आप राजस्थान से बिहार आ गए, कैसा लग रहा है?
0: जी सर बहुत अच्छा लग रहा
1: है। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद केशव कुमार डागुर साहब।
0: थैंक यू सर।
2: ये केशव जी थे जो वाइस प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। एक बात बताएं, टेक्निकल पढ़ाई में इतनी अपॉर्चुनिटी है, जैसे देखिए इन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की और बिहार में आकर ये अपना योगदान दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और श्रीराज ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं। लगातार बच्चों में बीएससी नर्सिंग या टेक्निकल पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। बहरहाल साथियों, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही वाइब्रेंट है, एएनएम जीएनएम ये बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है। अगर जो आपने इसे चुन लिया तो आपके लिए रोजगार की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावे अगर आप पैरामेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो ढेर सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आ गया है। सारी चीजों की जानकारी के लिए आप डायल कर सकते हैं 9162413233 या 9155558888 ये नंबर है। इस पर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से आपकी बातचीत हो जाएगी और श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो प्रोग्राम ला रहा हूँ, ये संस्थान बहुत ही उम्दा है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है और अच्छे जगह से एफिलिएटेड है, हॉस्टल की सुविधा है। अगर आप चाहें, मैं नहीं कर रहा, अगर आप चाहें तो फोन से बात कर सकते हैं और आकर मिल सकते भी हैं। नंबर हमने आपको बता ही दिया है, एक नंबर फिर से बता दे रहा हूं 9155558888। और अब राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: तो लाल बहिन अखन अपना सब सुनित छलू है प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस।
5: हाँ, एहिसँ हमरा लोकनि के बहुत रास जानकारी भेटैए, ओहि हिसाबसँ हमसब अपन से काज करै छी। आ देखियौ, आब हमर सबके कार्यक्रम घर आँगन जे ओ आब समेटबाक बेर भऽ गेलै।
4: मुदा चलितसँ पहिले अपना सब अपन बहिन सबके कहबनि जे कि आत्मनिर्भर बनबाक लेल अपना सबके बस कनिक प्रयास करैके अछि। जँ एक डेग बढ़बै छी अपना सब, तो जे अपन आसपास के बहिन सब छथिन हुनकर सबके संपूर्ण सहयोग से अपना सब के सफलता अवश्य भेटत,
5: निश्चित भेटत। पहले लेकिन जज्बा रहबाक चाही,
4: तब कार्यक्रम घर आंगन समेट के अपना सब कार्यक्रम खेती गृहस्थी में किसान भाई के स्वागत करै छी।
5: आ किसान भाई लोकन त सदैत किछ ने किछ काज करते रह छथि, कखनो खाली नै बैसै छथि। आ अपना सब हुनका सँ गप सप एहन करै छी जे समसामयिक हुए, जाहिसँ कि हुनका किछ लाभ होनि। तऽ आइ अपना सब चर्चा करब समेकित से पोषक तत्व प्रबंधन।
4: बहुत आवश्यक अछि अखन के समय में अपना सबके लेल जे समेकित पोषक तत्व प्रबंधन एकटा एहन कृषि पद्धति अछि जाहि में रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद, गोबर, हरियर खाद आ जैव उर्वरक जिनमें राइजोबियम भ गेल, एकर संतुलित उपयोग एहि मे कयल जाइत अछि। आ लाल बहिन, एकर मुख्य उद्देश्य माटि के उर्वरा शक्ति के लंबा समय तक बनौने राखे, फसिल के बेसी से बेसी उत्पादन प्राप्त करना ही होते हैं।
5: मुख्य उद्देश्य यह सब है जब माटिक उर्वरा शक्ति जखने बनल रहत तहने उत्पादन बढ़िया हैत, आ जब वो बंजर भ जात तो अहाँ लाख प्रयास करब मुदा अहाँ के उत्पादन क्षमता नहीं बढ़त। तो वही लेल तैं ने अपना सब बेर बेर कह रहल छन अपन किसान भाई लोकन के जैविक खाद, हरी खाद ऐ सब के उपयोग करू, जीवाणु खाद के आ रासायनिक खाद के कम से कम जत बड़ आवश्यक हुए उत्तवे उपयोग करू।
4: किसान भाई, एकटा सामान्य सिद्धांतक अनुसार पोषक तत्व के जे कुल आवश्यकता के लगभग एक तिहाई भाग जैविक खाद जेमे गोबर भ गेल, कंपोस्ट, हरियर खाद आ शेष दू तिहाई भाग रासायनिक उर्वरक से पूरा करवाक के चाही। दलहन आ तिलहन फसिल में राइजोबियम कल्चर के उपयोग अवश्य करी जैसे नाइट्रोजन के आवश्यकता के पूरा करते अछि। आ कोनो भी उर्वरक

0: के उपयोग करे से पहले माटिक जांच बड़ आवश्यक है।
1: ई समोनी बहन अहाँ बहुत नीक गप कहलहुँ हैं, किया तो जखन माटि के जांच करा लेब तहन अपना सबके ई बुझबा में आयत जे ओहि माटि में कोन चीज के कमी है आ ओ कमी कोन चीज से पूरा कयल जेतै, तखने ने ओहि पर
0: सटीक पता चले छै कमी के। खेतक जैविक कार्बन मात्रा बढ़ेबा के लेल सरल गोबरक खाद, वर्मी कम्पोस्ट आ हरियर खाद जेना ढैंचा भ गेल, एकर सबके व्यवहार किसान भाई अवश्य करी। ई माटि में पानि धारण के क्षमता के सुधारैत अछि। संगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन के माटि में स्थिर करबा के लेल राइजोबियम, एजेटोवेक्टर आ फास्फोरस के घुलनशील बनाबे वाला जीवाणु के प्रयोग बीया उपचार या माटि में मिलाकर कयल जाइत अछि। रासायनिक उर्वरक के 10 टन प्रति हेक्टेयर जैविक खाद आ नील हरित शैवाल के संगे धानक फसिल में उपयोग करला से अनुशंसित उर्वरक के मात्रा के 1/4 के कम कयल जा सकैत अछि।
1: कतेक ऐसा लाभ भेल किसान
0: सबसे आ लाल बहिन, 10 टन बायोगैस स्लरी, कम्पोस्ट या जलकुम्भी कम्पोस्ट के प्रयोग से धान आ गहूम में 30 किलोग्राम फास्फेट प्रति हेक्टेयर के अलावे आन पोषक तत्व के बचत कयल जा सकैत अछि। एहि विधि
1: तो एहन विधि के हम सब अपना कर
0: समेकित पोषक तत्व प्रबंधन,
1: हां तहन हम आशा कम खर्च में आब लाभ बेसी है।
0: जैविक खाद के संगे फास्फेट के घुलनशील बनावे वाला फास्फो बैक्टीरिया जीवाणु खादक संगे व्यवहार करला से चूना युक्त आ अम्लीय माटि में प्राप्त फास्फोरस के मात्रा
1: तो देखियो कतेक गप कहलहुँ तऽ हमर किसान भाई लोकनि तऽ अपने साकांक्ष रहै छथि, मुदा समेकित पोषक तत्व के प्रबंधन कऽ कऽ से फसल के गुणवत्ता सेहो बढ़ाओल जा सकैए आ माटि के उर्वरा शक्ति सेहो बढ़ाओल
0: जा, हाँ
1: कम लागत में। तऽ एहि तरह जँ किसान भाई लोकनि ध्यान दऽ कऽ समेकित पोषक तत्व पर ध्यान देता तऽ निश्चित रूप से उत्पादन क्षमता में सेहो वृद्धि हेतनि आ जखन उत्पादन क्षमता में वृद्धि होइ छै तऽ मोन प्रसन्न रहै छै, जे काज केलहुँ ओहि हिसाब सँ जँ फल भेटै छै मेहनत के हिसाबे तो निक लागे छे आ मनोरंजन तो सेहो किसान भाई लोकन के आवश्यक छन किया। तो जखन गीत नाद होत रहे छे तो तनाव मुक्त भ के लोग कोनो काज करे या तो आउ न अपन किसान भाई लोकन के सुनवा दे छे एकटा सुंदर सन लोकगीत
0: सुनित छी।

0: तो किसान भाई सबके फिर से स्वागत करै छिन राधा मोहन मिश्रक स्वर में, खूब निक लागल ई गीत सुने में। आ लाल बहिन अपना सब किसान भाई के लेल जे कृषि गतिविधियां लक आबित छी तो ओ सुनबाक बेर भ गेल अछि। वाचन आ संकलन छिन सविता कुमारी के, सुनैत छी कृषि गतिविधि।
1: आजुक कृषि गतिविधि के संग हम उपस्थित छी लाल बहिन किसान भाई बहिन लोकनि के लेल नव नव जानकारीक संग। बिहार सरकार द्वारा कुसियार उपजाबै वाला किसान के हित में किछु प्रमुख योजना के लाभ किसान भाई उठा सकैत छथि, जेना गन्ना किसान पंजीकरण कराकर, जेना गन्ना पंजीकरण प्रक्रिया पोर्टल https://ccs.bihar.gov.in पर जाकर। कुसियार यानी गन्ना किसान पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करू, 13 अंक के DBT ID दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन करू, नाम पता आधार संख्या ओ बैंक विवरण के मिलान करबाक चाहिए। सबमिट कैला पर गन्ना पंजीकरण ID प्राप्त भ जात। किसान भाई बहन लोकन पंजीकरण से लाभ होयत एहि तरह सब योजना के प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर सकै छी। अहाँ लोकन बिया ओ कृषि उपकरण पर अनुदान के लाभ उठा सकै छी। सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाता से भेट जाइत अछि। एतबे नहि, आधुनिक खेती हेतु प्रशिक्षण ओ मार्गदर्शन के सुविधा सेहो लऽ सकै छी। एहि तरहें एहिसँ लाभ उठाओल जा सकैत अछि। तैं पंजीकरण करा कऽ एकर लाभ किसान भाई लोकनि अहाँ लोकनि उठाउ। बेसी जानकारी लेबाक लेल संबंधित जिला के सहायक निदेशक ईख विकास ईख पदाधिकारी सँ संपर्क कऽ सकैत छी। गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा गन्ना सर्वे अभियान 2026 के लाभ सँ किसान भाई बहिन उठा सकैत छथि। एखन कुसियारक सर्वे भऽ रहल अछि, तैं सब सर्वे करा लिअ। सर्वे करेला सँ बहुत लाभ भेटैत अछि, जेना चीनी मिल सँ पर्ची, सरकारी अनुदान, कुसियारक मूल्य के बेर पर भुगतान। ई सब लाभ तखन भेटत जखन अहाँ गन्ना के सर्वे करेने रहब।

0: एकर लाभ उठा सकै छी। एहिमे गैर रैयत और रैयत दुनू किसान के सर्वे कराओल जाएत। सर्वे टीम अहाँ के खेत पर आयत, ओ सब जानकारी लेत, ओ अहाँ के खेत के जियो टैगिंग करत। ई सर्वे तकनीक आधारित अछि। मोबाइल ऐप के माध्यम सँ जानकारी एकत्र कयल जाइत अछि, खेत के जियो टैगिंग कयल जाइत अछि। एहि तरहे सही ओ पारदर्शी सर्वे सँ बेसी लाभ भेटैत अछि। एहि तरहे सर्वे करा कऽ किसान भाइ लोकनि बेसी सँ बेसी लाभ उठा सकैत छथि, जे एखन बेरक मांग अछि। एतबे नहि, किसान भाइ बहिन लोकनि, बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम 2026-27 किसान भाइ बहिन लोकनि गुड़ उत्पादन इकाई के लेल किसान निवेशक सँ ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कयल जा रहल अछि। कुसियार किसान निवेशक द्वारा गुड़ इकाई के स्थापना पर राज्य सरकार द्वारा 5-20 टन, 21-40 टन, 5-20 टन, 21-40 टन, 41-60 टन, ओ 60 टन सँ बेसी प्रतिदिन पेराई क्षमता वाला इकाई के ओकर पूँजी लागत मे 50% क्रमशः आ अधिकतम 6 लाख, 15 लाख, 45 लाख ओ 1 करोड़ तक अनुदान के प्रावधान अछि। योजना मे आवेदन करबा सँ पहिने किसान निवेशक लोकनि के पास गुड़ लाइसेंस होयब अनिवार्य अछि। एतबे नहि, गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा गन्ना फसिल क्षेत्र विस्तार योजना 2026-27 योजना के मुख्य उद्देश्य अछि जे गैर चीनी मिल क्षेत्र मे गन्ना क्षेत्र के बढ़ा कऽ किसान लोकनि के आमदनी मे वृद्धि कयल जा सकैत अछि। ओ गुड़ उद्योग हेतु गुणवत्तापूर्ण कुसियार उपलब्ध करायब अछि, एकर मुख्य उद्देश्य अछि। एहि योजना सँ ई लाभ होयत जे नव गन्ना किसान के प्राथमिकता देल जेतनि। प्रति किसान 25 एकड़ सँ लऽ कऽ 5 एकड़ तक लाभ हेतनि। प्रति एकड़ अधिकतम 25 क्विंटल गन्ना बीज के सहायता, बीज परिवहन हेतु निर्धारित सहायता राशि से भेटतनि। स्नेह किसान भाई बहिन लोकनि, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ई जनतव्य देलनि जे किसान रजिस्ट्री के दोसर मिशन मोड में एखन तक 74,434 किसान लोकनि के निबंधन भऽ चुकल छनि। कृषि मंत्री कहलनि जे प्रथम मिशन मोड में 10,14,981 किसान के फार्मर आईडी बनलनि, दोसर चरण में 7,15,096 फार्मर आईडी तैयार कयल गेल आ तेसर मिशन मोड में 10,37,283 फार्मर आईडी तैयार करवाओल गेल। राज्य में एखन तक 48,57,000 किसान के फार्मर आईडी तैयार भऽ गेल छन आ दोसर चरण में 12 मई सँ अभियान शुरू भेल अछि, जे 18 तक 74,000 सँ बेसी किसान लोकनि के निबंधन भऽ गेल अछि। एहिसँ किसान भाई बहिन लोकनि के केंद्र और राज्य के अनुदान के समय पर लाभ भेटतनि। एहिसँ पारदर्शिता बढ़त, ओ भ्रष्टाचार समाप्त होयत। तैं किसान भाई बहिन लोकनि के एहिसँ लाभ उठाबाक चाही, जे बेरक मांग अछि। बस आइ एतबे, फिर अगला दिन।
1: किसान भाई, अखन अपना सब सुनै छलहुँ हैं कृषि गतिविधि वाचन आ संकलन सविता कुमारी के प्रस्तुति असद दाऊद के। आ किसान भाई के एतेक नीक नीक जानकारी दिलियन, एकरा संगे आप किएक ने मनोरंजन दिस लो चलियन।
0: निश्चित रूप सँ मनोरंजन हेबाक चाही।

0: मुनि बहिन एखन नन्द शंकर झा के स्वर में ई सूचना नचारी जे हिनका कोना में हिनका तो बड़ा आसानी से मना सके छी, खाली जल आ बेलपत्र फूल चढ़ा दियो न बस, कोनो मिठाई मधुर के आवश्यकता नहीं है। आ देखियो आवश्यकता हमर किसान भाई लोकन के छन मौसम के, मौसम के जानकारी जहन रहे छन तो ओहि हिसाब से अपन काज कऽ लै छथि, समेट लै छथि। तब मुनि बहिन मौसम की कहै छै से एक झलक कहि दियो।
1: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से जे मौसम की जानकारी अछि से 20 से 24 मई धरि के आयल अछि। पूर्वानुमान अवधि मे उत्तर बिहार के अनेक जिला में गरज वाला मेघ के संभावना अछि आ वर्षा के समय में तेज हवा चल सकैत अछि जे कि 20 से 22 मई तक भ सकैत अछि। आ अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक आ न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रह सकैत अछि। सापेक्ष आर्द्रता भिनसर में 70 से 75% आ दुपहरिया में 29 से 30% रहबाक संभावना अछि। आ एहि अवधि में 14 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चलबाक संभावना बनि रहल अछि।
0: तऽ ई छल हमर सबके मौसम पूर्वानुमान। एक संग हमर सबके कार्यक्रम खेती गृहस्थी समेटबाक बेर भऽ गेलै, एकरा समेटी आ किसान भाई लोकनि से चलबाक आज्ञा लै छी।
1: नमस्कार लाल बहिन।
0: नमस्कार मुनि बहिन।

ये था हमारा ग्रामीण प्रसारण। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर एवं खेती गृहस्थी। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, TRE4 के अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। ऑनलाइन दवा बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर दवा दुकानदारों की हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। और राज्य के कई भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में कई निवेश प्रस्तावों को आज मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैमूर के कुदरा में पावर प्लांट और ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नालंदा जिले के बेन में बॉयल राइस्ड उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
1: उद्योग विभाग का दो मामला था, एक मैसेज पटेल वेयर हाउसिंग

0: लिमिटेड अरावन बेन नालंदा को निवेश प्रोत्साहन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। और इसी प्रकार दूसरा एजेंडा था मेसर्स ईएसई एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड खुदरा कैमूर को भी सिमिलरली वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई।
1: कैबिनेट ने प्रदेश में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क बढ़ाने की नीति के तहत इंडिगो को गया जी से बैंकॉक सीधी उड़ान की अनुमति दे दी है। श्री चौधरी ने बताया कि एक अन्य फैसले में औरंगाबाद, अरवल और सहरसा में खेल संरचना के विकास और स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
0: अगले एजेंडा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के थे, जिसमें अरवल, औरंगाबाद एवं सहरसा जिले में खेल के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण तथा आउटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि की हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है।
1: कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE-4 के लिए अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा रखें, तैयारी करें, जल्द TRE-4 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया विधि सम्मत होगी। पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी तत्वों के उकसावे में आकर अभ्यर्थी अनावश्यक रूप से विरोध प्रदर्शन न करें।
2: हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा फिर एक अपील है, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। आपने ये सरकार बनाई है, ये सरकार आपकी है, इसीलिए आप जाइए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। सरकार बहुत जल्दी आपके सपने को साकार करने जा रही है। आप इसको लेकर के कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं है, और आंदोलन के पीछे कौन कौन लोग है, जो लोग अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने आज पटना के सिन्हा रोड स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मुख्य भवन और बुद्ध मार्ग स्थित अकादमिक भवन में पूछताछ सह शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन भी किया। शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी प्रेरणा उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है।
3: जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, और उसे मुझे जाकर देखने का भी अवसर मिला कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की।
1: इधर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज TRE-4 परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर पटना में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पटना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप अशोक राजपथ पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन जुलूस निकालने के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण के लिए देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों और अकादमियों में भेजा जाएगा। सुश्री सिंह ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बैठक होगी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। हड़ताल के समर्थन में बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ से जुड़े दुकानदारों ने प्रदेश में अधिकांश दवा दुकानें आज बंद रखीं। यह हड़ताल ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री में नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध आयोजित की गई है। हड़ताली दवा दुकानदारों ने कहा है कि मजबूर होकर उन्होंने हड़ताल किया है।
4: ऑनलाइन में आज के डेट में आप AI के जमाने में किसी भी तरह का डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको दवाएं घर पर पहुँच जाएगी। उसका कुपरिणाम क्या हो रहा है कि बहुत तरह की नशीली दवाएं, बहुत तरह की प्रतिबंधित दवाएं, जरूरी दवाएं इसके द्वारा आ रहा है। आज हमारा डिमांड है कि जो कायदा कानून हमारे रिटेलर, हमारे होलसेलर के लिए बना हुआ है, वही कायदा कानून ऑनलाइन वाले के लिए भी हो।
1: हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया है कि जिले में मेडिकल स्टोर बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अन्य जिलों में भी दवा दुकानें बंद रहीं। इस दौरान सभी प्रमुख अस्पताल आधारित मेडिकल स्टोर और जन औषधि

0: केंद्र खुले रहे हैं। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के तहत इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिन्हित जनजातीय बहुल गांवों में आज भी शिविर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यह आयोजन 25 मई तक चलेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब तलब किया है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की व्यवस्था की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AINNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आज ब्रांड बिहार पहल की घोषणा की। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्यव्यापी इस पहल के तहत प्रदेश में निवेश, नवाचार और अवसरों के विस्तार को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व स्वयं मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत करेंगे। पटना स्थित मुख्य सचिवालय में आयोजित बैठक में आज ब्रांड बिहार पहल से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग आगामी 25 मई से पटना के ज्ञान भवन में 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करेगा। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कराकर नियोजन संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सहकारिता मंत्री और दानापुर से स्थानीय विधायक रामकृपाल यादव ने आज क्षेत्र में बरसात के दौरान संभावित जल जमाव की समस्या से निपटने की व्यवस्था की समीक्षा की। दानापुर अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में SDM अनिरुद्ध पांडे समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। श्री यादव ने अधिकारियों को जल जमाव और अतिक्रमण की समस्या से निपटने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गोपालगंज और रोहतास जिले में लू चलने की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व भाग, अरिया, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, गोपालगंज एवं रोहतास जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।

0: विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 42.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर जिले का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इधर विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर आज आंधी पानी और वज्रपात की आशंका जताई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर 22 मई को 7 समर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, अगरतला और न्यू जलपाईगुड़ी समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न भागों से राजधानी दिल्ली तक चलाई जाएगी। कटिहार रेल मंडल प्रवर वाणिज्य प्रबंधक अनुप कुमार सिंह ने बताया कि 26 मई को इन ट्रेनों की वापसी होगी।
1: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कटिहार मंडल से 2 जोड़ी ट्रेनें जो कि नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलाई जाएंगी। ऐसे ही 5 और जोड़ी ट्रेनें हैं जो NFR रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली या आनंद विहार के लिए चलाई जा रही हैं। और इनमें जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो सारी ट्रेनें वाया कटिहार NJP होते हुए जाएंगी। NFR से जाने वाली ट्रेनें जो हैं विभिन्न स्टेशनों से खुलेंगी, वो 22 तारीख को यहां

0: बढ़ती भीड़ के मद्देनजर 22 मई को 7 समर स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, अगरतला और न्यू जलपाईगुड़ी समेत पूर्वोत्तर के विभिन्न भागों से राजधानी दिल्ली तक चलाई जाएगी। कटिहार रेल मंडल प्रवर वाणिज्य प्रबंधक अनुप कुमार सिंह ने बताया कि 26 मई को इन ट्रेनों की वापसी होगी।
1: यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कटिहार मंडल से 2 जोड़ी ट्रेनें जो कि नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल के लिए चलाई जाएंगी। ऐसे ही 5 और जोड़ी ट्रेनें हैं जो NFR रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली या आनंद विहार के लिए चलाई जा रही हैं। और इनमें जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं वो सारी ट्रेनें वाया कटिहार NJP होते हुए जाएंगी। NFR से जाने वाली ट्रेनें जो हैं विभिन्न स्टेशनों से खुलेंगी, वो 22 तारीख को यहां से चलेंगी और वो दिल्ली या आनंद विहार टर्मिनल को पहुंचेंगी। जो वहां से वापस आने वाली ट्रेनें हैं वो 26 तारीख को वहां से चलेंगी।
0: विशेष निगरानी इकाई की टीम ने सहरसा जिले के महिषी अंचल कार्यालय के अंतर्गत बेलाही और सिरवार हलका के राजस्व कर्मचारी श्याम प्रसाद सिंह को 16,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने इस मामले में दलाल की भूमिका निभा रहे फूलचंद साह को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर जमीन की रसीद काटने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। ADG निगरानी पंकज कुमार दराद ने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले के करंडे थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनी गांव से पुलिस ने बैंक ऋण लौटाने में फर्जीवाड़ा करने के आरोपी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर जिले में पुलिस लाइन के समीप सड़क पर आज एक पेड़ गिर गया। इस घटना में एक महिला घायल हो गई। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल महिला को अस्पताल भेजा और सड़क से पेड़ की टहनियों के हटाने के निर्देश दिए। सुपौल जिले के बीरपुर में नगर पट्टी सीमा चौकी के समीप SSB और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी के पास से मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर और एक देशी पिस्तौल बरामद किया गया है। सीमा सड़क संगठन के अपर महानिदेशक जितेंद्र प्रसाद ने आज भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर बन रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। श्री प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि जून के प्रथम सप्ताह में बेली ब्रिज पर छोटे वाहनों का परिचालन शुरू कर दिए जाने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा TRE-4 के अभ्यर्थी तैयारी करें, जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। ऑनलाइन दवा बिक्री पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर दवा दुकानदारों की हड़ताल का प्रदेश में भी दिखा असर। और राज्य के कई भागों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने भभुआ, गोपालगंज और रोहतास में लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की प्रगति की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से की जाएगी। इधर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गंगा नदी के किनारे कटाव और संभावित बाढ़ की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संभावित कटाव स्थलों को चिन्हित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने और राहत की व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा चिन्हित कटाव स्थलों पर वृक्षारोपण और जल संरक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है। सारण जिला के मस्तीचक में संचालित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार और आधुनिकीकरण लाने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी ने 150 करोड़ रुपए की सहयोग राशि प्रदान की है। इस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 3,30,000 सर्जरी की जाएंगी और करीब 1,000 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण सेवा के लिए 10 एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। जिले में कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यव्यापी फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून 2026 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत किसानों को डिजिटल पहचान दी जा रही है और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। बीते दिनों सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जिले में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की और सड़क, स्वास्थ्य और रेलवे परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके।
1: और अब प्रस्तुत है सिवान जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
2: आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिवान जिले के विभिन्न प्रखंडों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इन शिविरों का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। शिविर में जिलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में आम लोगों की उपस्थिति भी देखी गई। बीते दिनों जिले में हुए ज्वेलरी कांड, लूट कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि लूट कांड के मुख्य आरोपी अंकित कुमार सिंह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंकित कुमार सिंह घायल हो गया। इसके बाद अपराधी को इलाज के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना भेजा गया है। हाल ही में गृह विभाग ने जिले में 2 पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। स्वीकृति मिलने के बाद जिले में 2 पुलिस अधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद जिले के लोगों ने कहा कि बढ़ते अपराध और सांप्रदायिक मामलों पर नियंत्रण के लिए सरकार का यह कदम काफी अहम है। कई सामाजिक और राजनीतिक दलों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जिले में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों और लैब के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष टीम गठित की गई है, जो जिले भर में निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अब तक कई निजी अस्पतालों और लैबों के अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें करीब 50 अस्पताल और लैब संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइसिकल पर छूट देने के फैसले के बाद सिवान में महिलाओं के बीच उत्साह बढ़ गया है। शोरूम पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस पर महिलाओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कम खर्च में सुरक्षित सफर संभव होगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के उद्देश्य से फार्मर आईडी बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब 1,16,711 किसानों को पंजीकरण किया जा चुका है। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी बनवा लें, ताकि बिना किसी रुकावट के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे सारण और सिवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
3: एक बार पुनः आप सभी श्रोताओं का आकाशवाणी के दरभंगा स्टूडियो में स्वागत है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों को। दूसरी सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी नगमे। तो लीजिए, सबसे पहले सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना का यह गीत,

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
1: सारण जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त

फिल्म शागिर्द से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी एवं मन्ना डे ने, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। तो सुनते हैं फिल्म शागिर्द का ये गीत।

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज़ों में फिल्म शागिर्द का ये गीत। अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म दोस्ताना से। इस गीत को भी गाया है मोहम्मद रफ़ी ने ही, आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

प्रोग्राम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म दाग का ये गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: भर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली।
0: ओ यार री छूटे ना,
1: छूटे ना
0: हाँ कर ली तो कर ली।
1: अब चाहे मारू थे या बाबा,
0: चाहे सर फूटे या माथा,
1: अब चाहे काटे मिले या कलिया,
0: अब चाहे लग जाए हथकड़िया,
1: अब चाहे घर छूटे
0: चाहे रब रूठे या दुनिया, अब चाहे मार रूठे या बाबा, यारा मैंने खोहा कर ली, अब चाहे घर फूटे या

किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर के गाए फिल्म दाग के इस गीत के साथ ही फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, रात 10:30 पर कार्यक्रम गीतों के रंग सुनना ना भूलें। आज बुधवार है और प्रत्येक बुधवार आप सुनते हैं रात 10:30 पर कार्यक्रम गीतों के रंग, और अब मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आपके रेडियो सेट पर।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकनि, आजुक कार्यक्रम में जखन हमरा लोकनि संवेद भऽ गेल अछि तऽ एखन सँ आधा घंटा धरि हमरा लोकनि बहुत रास गप करब। अहाँ गीतनाद तऽ जहिना सुनैत एलहुँ अछि ओ सुनबे करब। ओना जखन गीतनादक चर्च भेल तऽ की विचार आजुक कार्यक्रम केर आरंभ एक गोट गीतहिसँ कयल जाय। आउ ने हमरा लोकनि पहिने डॉक्टर अमलेन्दु शेखर पाठक केर ई गीत रचना सुनैत छी कुञ्ज बिहारी मिश्र केर स्वरमे।

0: कुंज बिहारी मिश्र के स्वर में ई देशभक्ति गीत हमरा लोकनि सुन रहल छलौ। बधु लोकनि भारतीयताक अनुभूति हमरा लोकनिक राष्ट्रीय समन्वयक नियामिका अछि। भारतीयताक एहि भावनाक कारणे हमरा लोकनि प्रत्येक भारतवासी एकताक सूत्र में बान्हल रहै छी। हमरा सभक संस्कृति में सभक कल्याण केर कामना कयल जाइत रहल अछि आ सर्वे भवन्तु सुखिना केर उद्घोष अदौ काल सँ हमरा सब ओहिठाम होइत रहल अछि। एहिठामक संस्कृति ओ सांस्कृतिक परम्परा सब एहन रहल अछि जाहि पर एखनहु हमरा सबकेँ गौरवक अनुभूति होइत अछि। हमरा लोकनिकेँ ओहि राष्ट्रीय संस्कृति केर संवाहक होयबाक गौरव प्राप्त अछि जतऽ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसीक आप्तवाक्य पुरुषार्थकेँ जागृत केने रहै छै। ओतहि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताक आप्तवाक्य पारिवारिक उच्च आदर्शकेँ इंगित करैत रहै छै। भाव ई जे अदौ कालसँ अपना सब ओहिठामक संस्कृति ओ सांस्कृतिक परम्परा सब एहि तरहें निर्धारित कयल गेल अछि जाहिमे सदति उच्च आदर्शक दर्शन होइत अछि। भेदभाव केर कोनो स्थान नहि रहैत अछि। सभक कल्याण मात्र केर कल्पना हमरा लोकनि करैत रहलहुँ अछि। अहुने एक गोट काव्य पाठ सुनैत छी हमरा लोकनि। कवि छथि कृष्णमोहन पाठक।
1: कविताक शीर्षक अछि भरत भूमिक शान। भरत भूमि केर शान हमहि छी, गंगा केर संतान हमहि छी। भरत भूमि केर शान हमहि छी, गंगा केर संतान हमहि छी। तीरक शैया पर सुतल

अंत फहराय लय छिसे दिग दिगंत शौर्यक गाथा इति मे अनंत फहराय लय छिसे दिग दिगंत माटिक रक्षा हित न्यो छावर माटिक

धारा हमर गंगा सन पावन धारा हमर एकरे ले जीवन के रदान जोरा।

बिनु चिन्हने एकरा नहीं बाँचत कतहु मनुजता टोली। ध्यान रहे बस जे कहलनी अछि ध्यान।

बंधु लोकनि कृष्णमोहन पाठक के काव्य पाठ एखन हमरा लोकनि सुनि रहल छलहुँ। आब देखू ने, शब्द विमर्श दिस सेहो जेबाक अछि, मुदा पहिने ई नचारी।

पार्वती मिश्राक गाओल एहि नचारीक बाद अब हमरा लोकनि चलै छी शब्द विमर्श दिस। एकटा शब्द अछि सुप्ति, छोट कोनियाके हमरा लोकनि सुप्ति कहै छी, आ डगरा, डगराके सूप सेहो कहै छियैक। चाउर आदि फटकबाक हेतु पाटसँ बीनल वृत्ताकार बासनकेँ सूप आकि डगरा कहल जाइत अछि, आ एकर जे छोट प्रभेद ओकरा डगरी कहै छी हमरा लोकनि। तहिना डगराक आधारवला भागकेँ चटवा कहल जाइत अछि, दूटा चटवायुक्त डगरा दोहरा डगरा कहबै छै। तऽ ई छल आजुक शब्द विमर्श। कार्यक्रमसँ विदा लेबासँ पूर्व अपने लोकनिसँ एक गोट आग्रह, आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने लोकनिकेँ केहन लगैत अछि, अपने लोकनि अपन प्रतिक्रिया आ कि सुझाव हमरा सब धरि पठा सकैत छी। एहि लेल हमर सभक कार्यक्रम केर पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा,

सिंगरहार। ये था मैथिली में हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: सिंगरहार। ये था मैथिली में हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: और अब समाचार संध्या के लिए आपको दिल्ली स्टूडियो लिए चलते हैं।

0: साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र

0: स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने

0: से नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बने संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के

0: अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: Mr. Modi said India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-29 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center

0: Rajasthan, Telangana and Uttarakhand till tomorrow. Meanwhile, severe heat wave gripped several parts of northern and central India, with the mercury breaching the 45 degree mark. In national capital, an orange alert has been issued for heat wave conditions for the next 3 to 4 days. More from our correspondent.
1: According to the Met Department, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 to 47 degrees Celsius tomorrow. In the past 24 hours, the maximum temperature in the national capital was recorded at 44.5 degrees Celsius. With increase in the temperature, the Delhi government has mandated a compulsory rest period for all outdoor workers from 1 p.m. to 4 p.m. amid intensifying peak summer temperatures. With Shivang Mishra, Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
0: In IPL cricket, match between Mumbai Indians and host Kolkata Knight Riders is underway at the iconic Eden Gardens. Mumbai Indians were 57 for 4 in 8 overs when match was halted due to rain. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defence and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year, despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है. जमीर रजवी से खबरें सुनिए. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां. भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है. फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तआवुन को फ़रोग़ देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया. वज़ीर-ए-आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है. मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है. अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा. भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है. और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है. अब खबरें तफसील से. भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी. इन माहिदों पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए. ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात की खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं. दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए. भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं. बातचीत के बाद सहाफती बयान में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफ़ी गौर व खौज़ किया है.
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है. यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है. उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है. मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप

0: पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के ज़िमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती तआवुन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तसादी शराकत दारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सबका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ़ फराम करदा 7 बिरादरियों के अराकिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायद से पाक इंतजाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगी लाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तौसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की जरूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के दिफाई हसूलयाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरक फरोग, मुश्तरक पैदावार और मुश्तरक बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निज़ामों में तआवुन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाज़ा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अक़वामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिर माशियात इंगो पीटरले ने आलमी माशी सूरतहाल और इम्कान से मुतालिक वस्त साला रिपोर्ट से मुतालिक कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की मजबूत घरेलू मांग, अवामी सरमायाकारी और बरामदाती खिदमात में इजाफे की बदौलत मईशत को मदद मिलती रहेगी। अक़वामे मुत्तहिदा के इक्तसादी जायजा और पॉलिसी डिवीजन के डायरेक्टर शांतनु मुखर्जी ने मुतनव्वे मईशत, ढांचा जाती असलाहत और बेहतर टैक्स महसूल को भारत की अहम ताकत करार दिया।

भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर जारी रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। तवक्को है कि इसी तरह की सूरत हाल कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी रहेगी। मौसमियात की एजेंसी ने गंगाई, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आइंदा 2 दिनों के लिए गर्म और मरतूब मौसम रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में आइंदा 3 से 4 दिनों में गर्मी की लहर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक शहर के किसी किसी मकाम पर दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल रहने की तवक्को है। आईपीएल क्रिकेट में ईडन गार्डन के तारीखी मैदान में मुंबई इंडियंस और मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान मैच जारी है। आखिरी खबरें मिलने तक मुंबई इंडियंस ने 10 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खसूसी जामे शराकत दारी में बदलने से इत्तेफाक कर लिया है। फरीकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरानदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक है। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यहीं नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो

शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस, श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो।

0: वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थ वर्ड टर्न है यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थ वर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जिसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था, दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाई जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because

0: In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities, where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर यह बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति

0: of partnership, not only for today, but for generations to come.
1: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
2: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई, जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
3: आज पाकिस्तान भी भलीभांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
2: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने, और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
3: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वांट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इनटू आवर लाइव्स, वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज।

0: best practices. We will cooperate on training and building institutions. We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving, costs are coming down, and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं. कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही. जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई. वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
2: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी, और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी. हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी. और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी. तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं, तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा. और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है. और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है. भारत को उतना फायदा नहीं होना रहा, दूसरे देशों को ज्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं. ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है.
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते. भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं. आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
3: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं. अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं. वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है. और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है. यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है. और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है. ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहां पर क्रिएट होंगे. इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी.
0: आज भारत ने अपने इतिहास

0: का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटॉनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।

0: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और इटली

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोकगीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम लोक माधुरी।

लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक माधुरी में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं दीपक कुमार झा। श्रोताओं, हम सदैव विभिन्न मौकों पर अपने इष्ट देव को याद करते हैं, उनकी पूजा आराधना और वंदना करते हैं। मिथिला क्षेत्र में अक्सर विभिन्न मौकों पर घर घर में देवी गीत और भगवती गीत गाए जाते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम देवी गीत से कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार झा के स्वर में ये देवी गीत।

झूमर। झूमर शब्द झूम से लिया गया है, जो पूर्वी भारत में गाए जाते हैं। झूमर यानी झूमना और गाते हुए झूमना। पहले की अवधि में यह कृषि क्षेत्र में अपनी भावनाओं का वर्णन करने वाली छोटी पंक्तियों के रूप में कामकाजी महिलाओं द्वारा गाए जाते थे, लेकिन कालांतर में यह विभिन्न सुखद मौकों यानी शुभ अवसरों पर गाए जाने लगे। झूमर गाने गायक के क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं, क्योंकि झूमर संस्कृति में पूर्वी भारत का एक विशाल क्षेत्र शामिल है। इसी अंतर्गत मिथिला क्षेत्र में भी कई अवसरों पर झूमर गीत सुनने को मिलता है। आइए सुनवा रहे हैं मीरा मिश्र और सहेली के स्वर में ये झूमर।

सामान्य तौर पर झूमर गीतों को दो व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात पारंपरिक झूमर और संशोधित झूमर। कुछ ऐसे गीत जो हम आधुनिक तरीके से गाते हैं उसे संशोधित झूमर कहते हैं। आइए एक इसी तरह का गीत सुनवाते हैं जिसमें नायिका अपने नायक से कुछ गहने और कपड़े की मांग भावनात्मक तरीके से करते हैं, जिसमें प्रेम, हठ, श्रृंगार, रूठना आदि का समावेश होता है। आइए सुनवा रहे हैं विभा सिन्हा की आवाज में ये झूमर।

श्रोताओं, अभी विवाह आदि का लगन देखने को मिल रहा है। हम आजकल प्रायः अपने चारों ओर कहीं न कहीं शादी, विवाह, विदाई आदि के गीत सुन रहे हैं। इस अवसर पर अक्सर सभी उत्सव वाले घरों में हम विवाह आदि के गीत सुनते हैं। हम गौर करें तो देखते हैं कि जहां इन अवसरों पर आधारित गीत नहीं बजते हैं, वहां का माहौल सूना सूना सा लगने लगता है। और अगर संगीत सुनाई पड़े तो घर में उत्सवी माहौल है, ऐसा हम अनुभव करने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं एक विवाह गीत। सुना रही हैं कुमारी कल्याणी।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे विवाह गीत, और अब इस कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं चलते चलते एक नचारी। कलाकार हैं श्यामा कुमारी।

अभी आप सुन रहे थे श्यामा कुमारी के स्वर में नचारी। इसी के साथ कार्यक्रम लोक माधुरी से हम ले रहे हैं विदा। दीपक कुमार झा को आज्ञा दें। इस कार्यक्रम के लिए प्रस्तुतकर्ता थे विनीत कुमार ठाकुर और संयोजन था अमरनाथ प्रसाद का। नमस्कार।

लोक माधुरी। ये था लोकगीतों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा एक और साप्ताहिक कार्यक्रम गीतों के रंग।

दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों के रंग और मैं हूं आपका दोस्त पवन। आज के इस संगीतमय सफर में हम निकल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां मंजिल से ज्यादा मायने रखती है मंजिल तक पहुंचाने वाले मांझी, जहां बहती हुई नदियां अपने साथ लाती हैं यादों की लहरें और किनारे पर ठहरती हैं कुछ सुरमई धुनें। तो आइए इस संगीत की धारा में हम भी डुबकी लगाएं उन गीतों में जिनमें बहता है प्यार का जल, जिंदगी का किनारा और दिल की मांझी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो बताता है कि जिंदगी भी किसी बहती नदी की तरह है, रुकती नहीं बस चलती चली जाती है। फिल्म सफर का यह गीत इसी बात को चरितार्थ करता है। मन्ना डे साहब का क्लासिकल स्वर, इंदिवर की रचना और कल्याण जी आनंद जी का अमर संगीत।

श्रोताओ, ये जो हमारी जिंदगी है वह बड़ा ही अजीब और अचरजों से भरा है। बिल्कुल नदी की तरह, कभी सुकून देती है, कभी बहाके ले जाती है। हर दिन किसी किनारे की तलाश में है जहां ठहर सके, सुकून पा सके। फिल्म खुशबू का यह गीत उस तलाश की आवाज है, जहां मांझी अपनी मंजिल से नहीं बल्कि उस धारा से बात करती है जो उसे दूर ले जा रही है। गुलजार साहब के शब्दों में और आरडी बर्मन की धुन में लिपटा यह गीत हर उस दिल के लिए है जो किसी किनारे की उम्मीद रखता है और किनारे की तलाश में है। भले ही धारा कितनी भी तेज हो, लेकिन तलाश जारी रहता है।

दोस्तों, जिंदगी की डगमग नाव को किनारा तब मिलता है जब मन में उम्मीद की पतवार और दिल में विश्वास की लहरें उठती हैं। ऐसे ही किसी सफर की कहानी कहता है अगला गीत, जहां सागर की लहरें हैं, मल्लाह की पुकार है और मोहब्बत का इकरार है। फिल्म आया सावन झूमके का यह प्यारा नगमा, जहां मोहम्मद रफी साहब की सुरीली आवाज में है जीवन का दर्शन, आनंद बख्शी के शब्द और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, जो हर धड़कन को लय देता चला जाता है। तो आइए सुनते हैं वो गीत जो हमें याद दिलाता है कि हर तूफान के बाद सुकून का किनारा जरूर मिलता है।

कभी सोचा है दोस्तों, नदी का जल जब ताल से मिलता है तो एक नई धुन, एक नया संगम बनता है। यही तो जिंदगी का सच भी है। हर रिश्ता, हर मिलन किसी न किसी सुर में ढलकर संगीत बन जाता है।

फिल्म अनोखी रात का यह अमर गीत मानव जीवन की उस अनोखी लय को बयां करता है जहां हर मिलन का एक अर्थ है और हर बिछड़न का भी एक मीठा एहसास। प्रिय श्रोताओं, इस गीत के साथ ही इस गीत के मधुर बोल लिखे थे इंदिवर ने और संगीत की अद्भुत रचना की थी रोशन साहिब ने। इसे अपने मधुर आवाज में सजाया था मुकेश ने। प्रिय श्रोताओं, इन्हीं मधुर सुरों और यादगार गीतों के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति गीतों के रंग के आज के इस अंक से। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय ऐसे ही सुरीले नगमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।

गीतों के रंग, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खायब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
6: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
7: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
6: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
5: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
4: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: और अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
3: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
2: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने